गुर गोपाल प्रसोई, जा की शरण पया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सासंग परापत, तिन पेट दुर्मद खोई, तिन की तूर नानक दास बांछे, जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवारे, सूका मन साधारे, दर्शन पीड़ित होत निहाला, हर का नाम विचार, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देव है, काटे जमकी फंदा रखाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते, आपे करने हारा, अपना दास हर आ

हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हा दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान, साचा साहेब सद मेहरवान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्व कल्याण, रहाओ जीओ पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान, अपने दास की आ पैज राखी, नानक सद कुरबान। सोरठ महला पंजवा, दुरत गवाया घर प्रव्या पे, सब संसार उबारिया, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, अपना बिरद सुमारिया, होई राजे राम की रखवाली, तूख सहज आनंद गुण गावो, मन तन दे सुखाली रखाओ। पतत उदाहरण सतगुर मेरा, मुझ का परवासा, बगसलाए सर सच्चे साहेब, तुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवा, बगस्या पार ब्रह्म परमेसर, फगले रोग बेदारे, गुरपूरे की सरणी उबरे, कार्य सगल सवारे, हर जन सिमरिया नाम आधार, ताव्यो तारिया सतगुर पूरे, अपनी कृपा तार रखाओ। सदा आनंद करे मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच सब सद पाखिया। सोरठ महला पंजवा, भय किरपाल स्वामी मेरे, ते साचे दरबार, ता गुरताप गुआया पाई, ठांड पई संसार, अपने जी जंत आपे रखे, जमे की हटतार, हर के चरण हृदय उरतार, सदा सदा प्रभ सिमर गे पाई, दुख किल काटन हार, रहाओ। तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, कारण कारण समरसो पाई, सच्चे सच्ची सोए, नानक प्रभु ते आई गे पाई, मन तन शीतल होए। सोरठ महला पंजवा, संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रा विसरो नाही, मन चिंदे अड़ा फल पाई, रहाओ। सब गुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा थारी, पार ब्रह्म प्रा पै दयाला, दुख मिटिया सब परवारी, सरबन दान मंगल स्वरूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेसर, उदरिया सब

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो न पति आया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब ढूंढन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभदे अपनी पाई ता कते आवे कद जाई ते साच न्याय नबेरा ऊहा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्वथान को राजा ते अनहर शब्द अगाजा।

पंजवा पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रहिया उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुमारे अपने दास का सुधार खवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वैसे वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पंजवा गुर पूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा प्रा मिले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई ही रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देवे पुरख विधाता हर हस्ते नहीं जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरे कीती पूरी प्रव रव रया पार पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिलका कोई कार्य सगल सुवारे हरहाओ मिल साधु दुर्मत खोए पादत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद ने तगाई है सा संग मिल त्याई है मान बांछित फल पाए गुर पूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दैद सदन मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैन फिर परदेश सिधायो हुण नहीं संदेश रो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चर के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत दिस निकटायो पांबीरी के पाद पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्व को ठाकुर सगरो दुख मिटायो कहो नानक होम में पीत गुर खोई तौ दयार बीठ लो पायो तब रहो अंधेश्वरो मायो जो चाहत सो गुरु मलायो सर्व

ठगोरी लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सरपस दीने आपे आप मिलाया को नानक सर्व तोग पूर्ण पूरा सदगुर पाया।

संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपा निध, पूर्ण खसम हमारे रघाव। आओ बैठ आदर सवताई, ऊ न कतहू बाता, भगत सिर पाओ जीव जने अपने, प्रताप।

कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमर हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध जाहे जपे गद पावे, और धर्म ताके सब नाहन हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई, सोरठ महला नाम माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर मो मन रहो उरझाई रहाओ, सागल जन्म परम ही परम खोयो न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निसबासर न छूटी अदमाई, सा संकब हू न कीना न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नाय को गुण राख लिहो सरनाई, सोरठ महला नाम माई मन मेरू बस नागे, जिस बासर दिखेन को तावत हे बिदरो को तागे रघाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन निमखन ही ये बसावे, पर थान पर दारा सुमरत्यो बिरथा जन्म सिरावे, मद माया के पयो बाबरो तू इतने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस्त नरंजन ताको मर मना जाना, जबगी शरण साध की आयो दुर्म सगल बिनासी।

सुआन पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की रखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ ता छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर नज पोखयो पस की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखियन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्यो गोविंद फिरता आओ सिरानी हो नान घर बिरध पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं मान थोक सुने वर पह नहीं जा कह संचन माटी मान है रगाव नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोचते रहे न्यारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल त्याग गए।

सहज पियाई। दुबधा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई, सब जग तेरा तू एको दाता, अवर न दूजा पाई। मानमुख जंत तुसदा निवासी, गुरमुख दे वडियाई, अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीव न पाई। तुन समात महापरमार्थ, तीन पवन पत नामंग, मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामंग, कर्म सुकर्म कराए आपे आपे पवित्र रामंग, मान मुख जूठ लय पैमानंग, आपे ज्ञान आगामंग, जिन चाख से साध जानन, ज्यो गुंगे मिठे आई, अकथे का क्या कथिये पाई, चलो सुधार जाई, गुरदाता मिले तामत होवे, निगुरे मत ना काई, ज्यो चलाए त्यो चले पाई, होर क्या को करे चतराई, एक परम पुलाए एक भक्ति राते, तेरा खेल अपारा, जित तुद लाए तेगा फल पाया, धुंग चला मनहारा, सेवा करी जे कशोवे अपना, जियो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिले है कृपा कीनी, अमृत नाम अधारा। गगन अंतर वास्या गुण परगासया, हुण मैं ज्ञान त्यानंग, ना मन पावे कह कहावे, तत्तो तत्व खानंग, सतगुर पीरा गैर गंभीरा, बिन सबदे जग बौरानंग, पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मानंग।

दो तुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हम पराधी निर्गुणे पाई तुझ ही ते गुण सोए मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख हो पापी पाखंडिया पाई मन तन नाम सेख रहाओ दिख माया चित मोया पाई चितराई पद खोए चित में ठाकुर सच बसे पाई ये गुर ज्ञान सुमोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सुम बैरागिए पाई दार कर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर विले सुख पाया पाई चूका मनो गुमान जल मल काया मंजगे पाई ही मैला तन होय ज्ञान महार सुनाई गे पाई मन तन निर्मल होय देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बूढ़े तेहे गुर बिन अलख न लखिए पाई जब बूढ़े पद खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तय दे बैयर बोले मीठली पाई साच कहे पिर पाए फिर गए बेदी सच वसी पाई अद करही हरनाए थको आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो बीदे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईदन अदकस के लिए पाई पाव करन चक पाए खेन पल नाम हृदय बसे पाई नानक मिलन सुपाय सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी।

भगत जिना कै संग पाप गुवावना जन नानक सद बलिहार बल बल जावना। श्लोक मोहल्ला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मध्यम सदगुर की प्रतीत नाही। अंदर कपट स कपटो कर जाने कपटे खपे खपाही। सदगुर का पाणा चित न आवे अपने सुहाए फिराही। कृपा करे जे अपने का नांग शब्द सुवाही। महला चौथा। मनुख माया मोहे आपे दूजे पाए मनुआ थिर नाहे। अनदन जल रह दिन राती होमे खपे खपाहे। अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निटना कोई जावे। कोई आव दुखी तो कभू ना पावे जन्म मरे मर जाहे। नानक बख्श लहे प्रसाचा जे गुर चरणी चित लाहे। पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रापाया सही बचखण जंत जिनी हरत्याया। अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया। नानक पे पुनीत हर तीर्थ नाया।

की अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु पागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई।

हो, ऐसो बेडी बन ना साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखेया, पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सोनरी बाई।

राजा राम को रास जे रस अनस बिसरजा ही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। तैयत आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

पदार्थ पाया, आनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपेश पाया, हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई रहाओ, रसना रमत सोंत सुख श्रमना, चित चेते सुख होई, कहो पीखन दुई नयन संतोखे, जय देखा तय सोई। तनासरी महला पहला कर पहला चौपदे, एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख, निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह।

खोटा कामन आवे वेख, नानक जेब च रुपा होए, खरा खरा आखे सब कोए रहाओ। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया खाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाणे, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवित मरे, तो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान सबन सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दर

राग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कुमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच लाए।

जो हर सेवे संत भगत तिन के सा पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी अरख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको।

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर

हो अनकबीरी समझाव हो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुमकी सजन सुहेले अराखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

आद अंत दयाल पूर्ण तिस बिना नहीं कोए, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए, वेद सिमरत कथे सासत भगत करे विचार, मुक्त पाईगे साध संगत बिरस जाए अंधार, चरण कमल आधार जन का राज पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक, तनाश्री महला पंजवा, फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे हर हर नाम ते आया, ताते मोय तारी ओड गोपाल, शरण परयो पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल, रहाव सुर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल तारन हर हर नाम ते आए, नारक नाम निरंजन गाइये पाइगे सर्वनिधान।

दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। मां आनंद मंगल रूप तुमरे भजन अनूप रसाल हृदय चरण सब सगुर को नानक बंध उपाल। तनासरी महला पंजवा अपने उद खिलावे भोजन अपने उद खिलावे सर्व सुख हो रस देव मन की नाल समावे। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कद तद तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा संत के पाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोबन तन जीरा इन ऊपर लय बारे। मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित पवन दे पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए भवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता विरस न कतहु जात सगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो की।

गए प्रभ अपने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत न आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़ अंध नानक प्रकाड साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन शाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म उरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम

प्रीतम स्यों मन लागा राव, जय जय पेखो तय नारायण, सगल कटा मैं तागा, नाम उलक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा, तनाश्री महला पंजवा, जन के पूर्ण होए काम, कली काल महा बिखिया मह, लज्जा राखी राम रहाव, सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना, निट न आवे जाम, मुक्त बैकुंठ साध की संगत, जन पाए उहर का ताम, चरण कमल हर जन की थाती, कोड़ सुख विश्राम, गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन, नानक सत कुर्बान, तनाश्री महला पंजवा, मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुमरा नाम रहाओ, चरण तुम्हारे हृदय वासे, संतन का संग पावो, सो अगर मैं मानना व्यापे, आड़ पैर गुण गाओ, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्यान्त प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बहुड़ जमना छापन, तनाश्री महला पंजवा, मांगो राम ते सब थोक, मार्ग को जाचत श्रम पाईए, प्रभ के सिमरन मोख रहाव, ओखे मुनजन सिमरत पुराना, वेद पुकारे कोख, कृपा सिंध सेव सज पाईए, दोवे सुहेले लोक, आन अचार व्यवहार है जेते, बिनखा सिमर न फोक, नानक जन्म मरण पे काटे, तिन साधु बिन से सोक, तनाश्री महला पंजवा, तृष्णा बुझे हर के नाम, मां संतोख होवे गुरबजनी, प्रसन्न लागे पूर्ण ध्यान रहाव, मां कलोर बुझे माया के, कर कृपा मेरे दीन दयाल, अपना नाम दे जप जीवा, पूर्ण होए दास की काल, सर्व मनोरथ राज सुख रस, सद खुशियां कीर्तन जप नाम, जिते कर्म लिखिया।

गगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तन्हा श्री महला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम थे आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी

दुख भंजन तासु मना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना तनासरी महला नावा ते जोगी को जुगतना जानो लोभ मोह माया ममता बोन जे कड़माए पछानो अरहाव पर निंदा उस्त तने जाके कंचन लोस मानो हरग सोवते रहे अतीता जोगी ताए बखानो चंचल मान दहत को तावत अचल जाए ठहरानो कहो नानक हे बिदको जो नर मुक्त ताए तुम मानो तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाव करो जेवद मन को संसाच।

प्रेम भगत प्रामन पति आया पड़ पड़ फूले चोटा खावे बहुत सियाण आवे जागे नाम जपे पौ भोजन खाए गुरमुख सेव करे समाए पूज से

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही साचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विख लादे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहे ना।

किरपयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बाणी तुजस पूर राखो, मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोविंद सिंह जिन कटे, मैं तो मोल महगी लई जी सटे, रहाओ सा संत बिना पाओ नहीं उपजे, पाविन भगत नहीं होए तेरी, भैरव दास एक बेनती हरस्यों, पैज रखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, अरहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, ताजपे नाम ले तुझे कोचारे, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माए पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तुही चबर ठोलारे, दस अठा अड़सठ चारे काणी, एह वर्तन गए सगल संसारे, कहे रवदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, तना

जंगम जाती तायो तूप दीप नहीं बेदा तायो पूजो पाती ताया वो खंड खोजते नविंद पाई ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे जो खोजे सो पावे की पाप परम तत्व है सदगुरु होए लखावे तन्ना।

जियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छत नीका अनाज मंगो सत सीका गऊ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी करकी गीहन चंगी चन तन्ना ले वै मंगी जय।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी पिन गाक मीका काखा। रतन गा गुर साधु देखे ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। अरहाओ मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु एगा वारी माया पोयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हमारा कहा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तौ वड़ अगवड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा अंबार कशु न जाने गातमित तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सयाना। मेरा मन आलसिया उगुलाना हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कब

जो अमली अमल लुभाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तेन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सिरे वे खिन खिन जिन घर मीठ लगाना। हर घर कृपा तारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबाना। जैत सरी महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड़ पाया। हार रसक रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी। पुर बचनी बिसगर काटबा मेरा मन आराम ना रस लागबा। हर किए पतत पवित्र मिल सतगुर हर नामे हर चाख बार हाउ। तन तन वड़ भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु ले उन मन लागबा। तिसना अगन बुझी सांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाखीन तुर पाए जिन स गुर दर्शना पाएबा। ए दूजे पाए पवे गर्भ जोनी ता बिरथा जन्म तिन जायबा। हर द्यो बिमल मत गुर सत पग सेवह हम घर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण सत पग मांगे हर होए दयाल दिवाएबा। जैत सरी महला चौथा जिन हर हिरदे नाम ना बस्यो तिर माद की जे हर बन जा। तिन सुनी दे फिरे बिन नावे ओए खाब खा मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रोतारी गुर ज्ञान दियो मन समझा। अरहाओ हर कीर्त कालजुग पद उत्तम हर पाई गे सतगुर माजा। हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन सद मिलियो वड़पागी सब केलबक गए गवाजा। सतगुर साहु पाया वड़दाना हर किए बहुगुण सांझा। जिन को कृपा करी जग जीवन हर उरतारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जैत सरी महला चौथा सत्संगत साध पाई वड़पागी मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तारस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा। मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिले उलाए च पीड़ा। अरहाओ सागत बंद पय है माया दिख संचय लाए ज पीड़ा। हर के अर्थ खर्च न सक है जमकाल सह सिर पीड़ा। तेन हर अर्थ श्री लगाया गुर साधु बहु श्रद्धा लाए मुख तूड़ा। पलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध पुर मिल साधु पा खान हर हो मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा तार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर घर सिमरो अगम अपारा जे सिमरत दुख मिटे हमारा। हर घर सतगुर पुरख मिलाव गुर मिले सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे हर घर नाम रखो उरतारे। हर घर अमृत भजन सुनावो गुर मिले प्रकट होई राम। मसूदन घर माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर घर दया करो गुर मिलो पुरख निरंजन सोई राम। हर घर नाम सदा सुखदाता हर के रंग मेरा मन राता। हर घर महापुरख गुर मिलो गुर नानक नाम सुख होई राम। जैत सरी महला चौथा हर घर नाम जपाह पुरमुख नाम सदा लैलाहा। हर घर भगत रिड़ाव हो

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुनकर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। तार कीर्त जस अगम अथाह, खिन खिन राम नाम गावाह। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाए सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जगजीत जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी

अब तीर्थ वक्त जग पुन तोलाहा, हर घर नाम ना पूजे पूजाहा, हर घर अतुल तोल अदपारी, गुरमत जपो महाराम, सब कर्म तर्म घर नाम जपाहा, किल विख मैल पाव तो वाहा, तीन दयाल हो जने ऊपर, जो नानक नाम ओ महाराम। जैत सरी महला पंजवां, घर तीजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद कोई जाने, कवन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे, ताकी निर्मल रीत रखाओ, माल पिता बनता सुध बंधव, इष्ट मीत अरपाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाई, मुक्त माल तनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बेगानी अवधे, ता मैं संतोख न पाया, हस्त रथ असव पवन तेज, तनी भूमन चतुरंगा, अंगना चलो इन मैं कछुए, ऊर सिधायो नांगा, हर के संत प्रेय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाइये, नानकी हा सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाइये। जैत सरी महला पंजवां, घर तीजा दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद दियो संदेसरो, कहियो प्रे कहियो, विष्णु भई मैं बोबद सुनते, कहो सुहागन सही यो रखाओ, को कह तो सब बहार बहार, को कह तो सा महियो, वरना दी से चेन लखिये, सुहागन सात बुझियो, सर्व निवासी कड़कड़वासी, लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहे तो सुनो रे लोगा, संत रसन को बसइयो। जैत सरी।

दूख आराधन दूख आराधन बिसरे ना काहू बेरा नाम जगत कोड़ सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग तेरे ओ सागर पावक को जो संत फेटे वड भाग जन नानक सर्व सो पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान धरा त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव मया करा रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा नाव रूप पयो सत संग पंध पार परा आप्यो पियो गातियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जा को पय गोविंद सहाई दुख सहज आनंद सगल स्यों वा को व्याध नकाई रहाओ दिसे सब संग

तिनके संग नानक निस्तरी है, जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला पंजवा, गोविंद जीवन प्राण तन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी।

जाको जोगी खोज तहारे पायो नाए ते पारा। तो स्वामी तुम निट पछानो रूप रेख ते न्यारा, पाम नाम जगत में हर को कभू नाए संभारा। नानक शरण पर्यो जग बंधन राखो बिरद तुहारा, जय तसरी महला पंजवा। शांत कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद, श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अनदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संगमीत। शांत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया, इस मोहन लाल प्यारे ओ फिरो खोजंतिया। ते दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे, नयन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिल फीना थीरीजे। प्रसो मन लीना ज्यो जल मीना क्यात जिवें तसंतिया, जन नान गुर पूरा पाय सगली तिखा बुझंतिया। यार वे प्रे हब्बे सगिया मूह कई ना जइया, यार वे एक डू एक चाड़े होके चेतिया। एक डू एक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा, तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा। किन्नी मैंडा लाल रीझाया हों तस आगे मन ढेईया, नानक कहे सुन बिनो सुहागन मूंद डिखा पिर कईया। यार वे पिरिया पणपाणा किश नी सी छंदा, यार वे तैराव्या लालन मूह तद संदा। लालन ते पाया आप गवाया चेतन भाग मथाणे, बां पगड़ ठागर हों कि दी गुण अवगुण ना पछाणे। गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बू के सुहंदा, जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी था मैं पाई, वर लोड़ी दा आया वजी वाधाई। महामंगल रहसथिया फिर दयाल सदन वरंगिया, वड़ भाग पाया गुर मिलाया साध के सत्संगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सो सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जय तसरी महला पंजवा। कर दूजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, स्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कस न जाए अकथ, नांग प्रसरणागति राखन को समरथ। शंत जो जानो त्यों राख हर प्रो तेरिया, एते करो असंख अवगुण मेरिया। असंख अवगुण खते फेरे नित प्रस फूलिए, मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी फूलिए। लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया, बिनवंत नांग दया धारो ताड़ पव जल फेरिया। श्लोक निरतन पवे असंख गुण

इड़तन रूपहीन किज साक न सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभो एसो प्रसन्ना तलोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसनं रचत मूड़ अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हावरंग माणिया मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने से तीचित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस कोक जागत पगलाया आर जा गई वेहाय तंदे ताया पूर्ण पय ना काम मोया माया क्या वे चारा जंत जा आप उराया श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण कौतक कोड तमाशय चेतन आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सद कर जानिया।

नाद को रंग के बेदया सन्मुख उड़तावे पवर लोभी कुसुमबास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजाहे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभाहे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कब हो चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरी है कोई पवित्र शरीर चरना थूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामंग सर्वणंग सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सर्व बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना तिरहड़ी सच स्यों पौड़ी।

आद हरूड़ो महारंगो लोड़ काली हर नीहो ना होए राव हाऊ टूडेंदी दर्शन कारण बीती बीती पेखा गुरमिल परम गवाया है एबद पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुर माते एबद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूड़ो ही ओ रे ही ओ महाराज री मायो तीघर न्याई मुए फाक्यो रे हरहाओ कणो कणो कणो सा लोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महाराज रो गाथ वाउस लुबड़ो ने पगड़ो पाए संजोयो रे सुन मन सीख सजन सगलो थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे जाको लैणो महाराज री गाठड़ियो जर नानक करभास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा तार पंजवा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन पंच दुख और अंग रोग ए तंते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर शोर बिखियाते गुर को सब मेरे ही रे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गयो मोय हर रंग पीन पेख्यो लालन पाड़ बीज खोय अंध चिता हरखे पतीन तेसी को ग्रसो

कर्म तर्म जप एही आराम नाम निर्मल है रीत रखाओ प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन प्रभ नीत पाठ काट तो सत्संग मोर मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद पाए मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आदि जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमखी रहते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत तारो प्रमान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे समरथ का।

दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म हू बीजन सो खावन विस्मन विस्म पै विस्मद आना बीओ दूसर लावन रसना सिमर सिमर जह जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पनवा माई माया चल तरन की अग्न मेघ की छाया गोविंद भजन मिन हड़का जाल रखाओ छोड़ सियान बहु चतराई तो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मार्ग देखा यो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पाग ही समत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दैन पै मल टोडी महला पनवा माई चरण गुर मीठे वड़े भग देवे परमेश्वर कूड़ फला दर्शन गुर डीठे रखाओ गुण गावत अच्युत अविनाशी काम क्रोध दिन से माटीठे अस्त्र पय सज रंग राते जन्म मरण बहोर नहीं पीठे बिन घर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक ना बिहून चले सामूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर घर नाम चिता रहा सहज आनंद होवे दिन राती अंकर पलो हमारा रहाओ और पूरा पेट्यो बड़पागी क्या को अंत न पारा वारा कर गए काल योजन अपना बिरसागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बौड़ न संकट द्वारा नानक शरण गई स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पुनवा माई मेरे मन को सुख ओढ़ आनंद राज पुगवे हर सिमरत दिन से सब दुख रखाओ ओढ़ जन्म के किल विख नासे सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पैयासा तरसन भेटत उतरी पुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न धोख टोडी महला पनवा हर घर चनर दे उर थारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सबल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे गुण दावत अतुल सो पाया ठाकुर अगम अपारे योजन पारब्रह्म अपने कीने इनका भावर कशना विचारे नाम रतन तुन जब जब जीवा हर नानक कंठ मझारे टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो का अपने अदमाई उर्जो कनक कामनी के रस न कीर्त प्रव गाई रहाओ जग झूठे को साज जान के तसे रुच उपजाई तीन बंध तिमर नहीं कबू खुद जो संग सगाई मगर रहो माया मैं निस दिन छुट्टी न मन की काई है नानक अब नाय अंत गत बिन घर की शरणाई टोडी बाणी भगता की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर चल की माशली चरे खजूर ताए रे बग बाद लायो जिन घर पायो तिने छपायो रहाओ पंडित होए के वेद बखाने मूर्ख नाम जो रामे जाने कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही पत पवित पहे राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकासी व्रत है काहे को तीर्थ जाई पंत नाम देव सुकृत सुमत पहे गुरमत राम कहे को ना बैकुंठ गए तीन शंदे खेल अच्छे रहाओ कुम्भार के कर हंडी अच्छे राजा के कर संडी गो बामन के कर रांडी अच्छे रांडी संडी हांडी गो पानिये के कर हींग अच्छे पैसर माते सींग गो देवल मध्य लीग अच्छे लीग सीग हीग गो।

गोविंद आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोविंद गो। अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष उपावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर पवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस्त कजनदर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो सहो सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर

निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औद विहात है, फूटे कर जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिल उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रहाओ, मात पिता सुध बंद जान हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जाको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो, जान बूझ के बावरे ते काज बिगारियो, पाप करत सुगत्यो नहीं न गर्भ निवार्यो, जे बिदगुर उपदेसया

तीन, तेरा नाम है अधारा अरहाव करीमा रहीमा, अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी, देह लेह एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी, नामे चे स्वामी बगसंद तू हरी, हल्ले यारा खुशखबरी, बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ, नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ, कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवि, द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी।

रसना नाम जपोता मथिये इन विद अमृत पावो मन संपट जित ससरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रब तरहे कहंदे कह कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई भगत हीन नानक जन जंपे आओ सारा ही सच्चा सोई सूही मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसे ना बाहर जाए अमृत छोड़ कहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो चाकर साचे केरे रहाओ ज्ञान ध्यान सब कोई रवै बंधन बंधया सब जगह।

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही मोहल्ला पहला कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसाणी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माए नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वरज रहाई है निजर चरे सह तुन लाग करगी परचा पाई है अंजन माए नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या अमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरपहो पल पाई है अंजन माहे नरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है।

ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मिलहारस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई। सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ। हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुगध नर को रा होय, जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नदर करे तां सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूफी महला चौथा, जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सहे सुमाए, हर राजन चा खोजे पाई, तौ कत अंध साध लो भाई, हरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मानमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे। सूफी महला चौथा, तार छेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया, उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत, किसन उतरिया कार्य से जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दूख भूख सब ले जाए, अरहाव अरवदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोग शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूफी महला चौथा, तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, जिनकी वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा, अरहाओ तोर भगत जिना कौ बख्सया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा, से भगत से सेवका, जिन्ना घर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते घर पाईए, सिर निंदक कै पवे शारा, जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद विखीली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूफी महला चौथा, जिथे घर आरा दिए, तिथे घर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसे, होर तबिद लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई, अरहाओ सह संगति संघ हर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वा के, हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर मानक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की, भगता को मिली वडियाई, हर तन निरपौ सदा सदा, अस्थिर है साचा, इव हर तन अग्नि तस्करे पाणिये, जम दूते किसे का गवाया ना जाई, हर तन को उच्चका एड़ न आवई, जम जागाती दंड न लगाई, सागती पाप करके, दिखिया तन संतिया, तिना एक विख नाल न जाई, हलते विच सागत दुहेले पहे, हथों छुड़क गया, अगे पलत सागत, हर दर गए टोई न पाई, एस हर तन का साओ, हर आप गए संतो, जिसनु दे, सो हर तन लद चलाई, एस हर तने का तोटा कदे ना आवई, जन नानक को कुर सोजी पाई,
ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣਾ ਰਵੇ ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਵਰਨੀਏ ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਜੀਓ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਅਰਹਾਵ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਗੁਰ ਕੀ ਸਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਗੇ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਸਾਗਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਵੰਦੇ ਸੋ ਨੇਫਲ ਸਭ ਅਗਿਆਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੇ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਦਰਗੇ ਮਾਨ ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਦੇ ਉਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुध सिरट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगद नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई।

नित नहीं पाइये अंत न लइये मंत्र से चरणारे पावो दान ईठ होए मांगो मुख लागे संत रे नारे जन नानक कौ गुर कृपा तारी प्रभा दे निस्तारे सूही महला पंजवा कार तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मांगन बहुता।

काम को ऊड़ खलोया, नाम की बेला पै पैसोया, अवसर अपना बुझे ना ए आना, माया मोर अंग लपटाना, अरहाओ लोभ लहर को बिरस फूल बैठा, साजना का दर्शना डीठा, कहू ना समझे अज्ञान गवारा, भौर भौर लपट्यो जंजारा, अरहाओ दिखे नाद कर्ण सुन पीना, हार जस सुनत आसमान कीना, दिखत नाही रे तेघत अंधे, तोड़ जाए झूठे सब तंदे, अरहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करीजे, तार कृपा मुझे साथ संग दीजे, तौ कुछ पाइये जो हो ये रेना, जिसे बुझाए इस नाम

अखारे संगा ऊहा संत करे घर रंगा तय मरण न जीवन सोग न हरखा साच नानकी अमृत वरखा गुज कथा ए गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पनवा जाके दर्श पाप कोट उतारे भेटत संग यो पवजल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हम कौहर नाम चितारे रहाओ जाका शब्द सुनत सुख सारे जाकी टहल जमदूत बेदारे जाकी तीरक इस मने सुधारे जाके सिमरन मुख उजरारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे शरण नानक तिन सद बलिहारे सूही महला पंजवा रहन न पावे सुर नर देवा ऊर सुधारे कर्म जन सेवा जीवत पेखे जिन्नी हर घर त्याया साध संग तिनी दर्शन पाया अरहाओ बादशाह सहावा पारी मरना जो दिसे सो काले करना ऊड़े मोए लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना किरपा निधान नानक कौ करो गात नाम तेरा जपी दिन रात सूही महला पंजवा घड़ घड़ अंतर तुम्हें बसारे सगल समग्री सूत तुम्हारे तू प्रीतमा तू प्राण आधारे तुम ही पेख पेख मन बगसारे अरहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रमहारे ओढ़ गही अब सा संगारे अगम अगोचर अलख अपारे नानक सिमरे देन रह नारे सूही महला पंजवा कमन काज माया बड़े आई।

लोभ मोहे बाधा मां गर्त मैं निगरत जाता नानक की अरदास सुनीज दूपत पाहन प्रभ मेरे।

तुम छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ। पर्वत दोख महाबिकराला, खिन भय दूर किए दयाला। सोग रोग बिपत अद पारी, दूर पई जपना मुरारी। दृढ़ तार लीनो लड़लाए, हर चरण गए नानक सरणाए। सूगी महला पंजवा, दीन छड़ाए दुनी जो लाए। दोई सराई खुरामी कहाए, जोत

ना जाए। सर्ब निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोल आया तेरा। सूही महला पंजवा, प्राते काल हर नाम उचारी। ईत ऊत की ओर सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम। पूर्ण हो वह मन के काम रहाओ, प्राप अविनाशी रैन दिन गाओ। जीवत मर्त निचल पावे थाओ, सो साओ सेव जिद तोट न आवे। खात खर्चत सुख अनद विहावे, जग जीवन पुरख साध संग पाया।

गुण गावत अच्युत अविनाशी, ताते काटी जम की फासी, हर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सूही महला पंजवा, अमृत बजन साध की बाणी, जो जो जप तिसकी गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी, अरहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन महे परवेसा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई।

पूरे भाग प्राप्त होई। अरहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोनी दूता लाई प्रेम शोभा करत कसाई। निर्दय जंत दया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई। तरवास न देवे दुत रमाई, दिन रैन अपना किया पाई। किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई। चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूही

आठ पैर जित तुद ते आई, निर्मल होवे देखा मेरे राम। हाँ सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साध संग, तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पाड़ ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साध

तेन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संती मंगल गाया। सबल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन।

लायन हरसो लयन मिलाय सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से तीराते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ठोवा हर जन के पीसण पीस कमावा नानक की प्रापास बेनंती तेरे जाना देखण पावा सूही महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करणे हारा चरण तूड तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बरहारा मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लहिए रहाओ मुक्त भुगत जुत तेरी सेवा जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सदगुर दीन दयाला कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक कहो प्रापय कृपाला सदगुर पूरा पाया तू ही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरह सो मर जाए दयाल होवे जिस ऊपर करते सो तुद सदा थे आए मेरे साहेब तू मैं मान निमाणी अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी अरहाओ चरण तूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन को बल जाई अमृत भजन दे उरतारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गात तुझ पैसारी तुझ जेवड़ अवर ना कोई जिसनू लाए लाए सो लागे भगत तुहारा सोई दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहेब तुठे पावा सास सास नानक आराधे आठ पैर गुण गावा सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तो दुख कैसा पावे बोल ना जाने माया।

सेवक को पौ किश नाही, जम नहीं आवे नेरे, रहाओ जो तेरे रंग रते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श न मेटे कोई, सदगुर का दिलासा, नाम त्यायन सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्ट ले सद है, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी, सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रखनहारे, जित तू लावे, ते तम लागे, क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी तू प्रवेंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी, अरहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है, आप त्या होइए सब रेणा, जीवतियां यो मरिए, सफल जन्म जिसका जग पीतर, साध संग नव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, ये दया करे प्रवे आपे, दीन दयाल किरपाल प्रस्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला, राग सूही अष्टपदियां, महला पहला कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

मनना पिजई हत मैले चित कठोर सप्पै दुध पी आईए अंदर विस निकोर आप करे किसे आखिए आपे बख्शनहार गुरसब दी मैल उतर।

आवई दुख ही महे पचन होमे मैला जल फिर मर जमे वारो वार पय किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सराही सच मान दर सचे सत्यार गुर पूरे पूरी मत है।

सुर्ग अवतार माया तंदया सोदत सोदत सोद तत दी चारिया ना बिना सुख नाहे सर पर हारिया आवे जाए अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सावाद जोनी परम ते जिनको पय दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोजे कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप।

दूर है, जैसी आसा तैसी मनसा, पूर है या परपूर है, हर की नार सो सर्व सुहागण, रांड ना मैं ले वैसे, नानक मैं वरसा चा पावे, जोग जोग प्रीतम तैसे।

चार गुणी कर छाया पूरे पुरख विधाते तस्कर मारवसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तार गुरमत मिले प्यारे वार पायड़ा बालड़िए आस्था मनसा पूरी राम फिर रावे अड़ी शब्द रली रब रहया ने दूरी राम प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे जो ते दी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़िए माड़िए त्यो लोवा सिरता जा राम हाँ बिसु पई देह गुणा अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो।

परम गद पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तननाठी पाखंड परम गवाया हौ में पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे वेण सतगुर मगना पाया उजड़ पंथ प्रमे गावारी खिन खिन तके खाया आपे दया करे प्रवदाता सदगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के विछड़े जन्म मेले नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए हिरदे तन ओ माई।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगस अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर्म अंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया साथन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे घर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सारागी साज शब्द लिवलाई अनदिन सहज रह गए रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर न जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रवेंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जमी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह सुमाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहेन सुनाम ते आए इहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम अंतरे हो में ममता काम क्रोध चितराई राम अंतर चितराई थाए न पाई विरता जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कुटम सुध पाई नानक माया मोह पसारा आगे साथ ना जाई हां पूछो अपना सतगुरु दाता किन वेद दुत्तर तरिए राम सतगुर पाए चलो जीवत्या एव मरिए राम जीवत्या मरिए पौजल तरिए गुरमुख नाम सुमावे पूरा पुरख पाया वड़ पागी सच नाम लेवलावे मत प्रगास पई मन मानिया राम नाम वड़े आई नानक प्रपाया शब्द मिलाया।

एक सो सदा सद जीवई बलराम जियो, तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा, जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जीओ, सदगुर मिलिया दयाल,

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड़ भागी पाई है।

हर गुण दे हर संतन के वसे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी। सफल जन्म हुआ पो भागा हर भेटिया एक मो

गुरमुखे सदकरणी सारी बिनसे प्रम पे झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर्म नवनिध परे भंडारा।

सच रते से निर्मले होमे तज विकार जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा सूविगे सूहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए ज्यो टेके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी सगत सिवे कर आई मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर अपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है संतन पाया जाए इस लेंदे बिलम न हो वई रंड बैठी दूजे पाए मुंद एयानी दुमनी सूहे वेश लुभाए। शब्द सच्चे रंग लाल कर पाए पाए सीगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजे परमाई मनमुख ठौर ना पाए नी फिर आवे जाई जो तुझ भावे सो थीए सब चले रजाई। श्लोक महला तीजा सूहे वेश कामण कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख तरे प्यार ओस सील ना संजम सदा झूठ बोले मनमुख कर्मखवार जिस पूर्व होवे लिखया तेस सतगुर मिले पतार। सूहा वेश उतार तरे गल पैरे खिमा सीगार पीगे सौरे बो शोभा पाए तिस पूज करे साब सहसार। और लाई किसे दीना रले जिस रावे सिरजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अवनासी पुरख प्रतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी बिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी सब पुरियाईया शार पौड़ी यो जग आप्यो पायोन कर चोज विडान पंच तात विच पाईयन मोह झूठ गुमान आवे जाए पवाइये मनमुख अज्ञान। एक ना आप बुझायोन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख्सियोन हर नाम निधान। श्लोक महला तीजा सू विगे सूहा वेस छड तू ता तिर लगी प्यार सूहे वेस तिर केने न पायो मनमुख दज मुई गावार। सतगुर मिले सूहा वेस गया होमे विचो मार मन तन रत्ता लाल हुआ रसना रत्ती गुणसार। सदा सुहागण शब्द मान पाए पाए करे सीगार नानक करमी मैल पाया फिर राख्या उरतार। महला तीजा मुंदे सूहा पर हरो लाल करो सीगार आवन जाना विसर गुरसबदी विचार मुंद सुहावी सोनी जिकर सहज पतार। नानक सात नरावीए रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है मनमुख मुग्ध रत्ता होमे मेरा कर मोए केश साथ ना लिता सिर उपर जम काल ना सुजई दूजे परमिता। फिर वेला हथ ना आवई जम काल बस किता जेहा तुर लिख पायोन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतियां ए ना आखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरखे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना

पौड़ी सच्चा अमर चलायोन कर सत फुरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका भीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़ियस होर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आप युगम चलायेद जगतंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दैद यो मन तामद गुर ठाक रखाया नावे नू सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखया मेट न सकी है जो हर लिख पाया श्लोक महला पहला दोए दीवे चौदे हटनाले जेते जीते ते वनजारे खुले हट होआ व्यापार जो पहुंचे सो चलन हार धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लहा परवान कर आए वजी वाधाई सच नाम की मिली वड़ियाई महला पहला राती होवन कालियां सुपेदा सेवन दियो बग्गा तपे कणा कालिया काले वन अंधे अगली बारे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बारे तबे न पावे मान पौड़ी काया कोटर तय हर सच्चे आपे एक दूजे पाए खुवायन हौमे विच व्यापे इहो मानस जन्म दुलंब सा मनमुख संतापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल अरचायोन।

जल थल महियल परपुर लीना, तड़तड़ जोत तुम्हारी, सिख मत सा बुद्ध तुम्हारी, मंदर शामा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा, गुण गावा नित तेरे, जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई गंगा, एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला, आपे शब्द

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर सच गुरते शोभा पाई, जगदीश से वो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर विख है, बौड़ ना मरे ना जम पिख है, करही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अन दिन गावे एको नाम।

बात होवे नहीं। अपना भला सब कोई बांछ सो करे जे मेरे चितना चितैनी। मन की मत त्यागो हरजन एहा पात कठैनी। आन दिन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी जो पावे ते वे बोलैनी। बलाबल मोहल्ला चौथा आनंद मूल त्यायो पुरखोत्तम। अन दिन अंध आनंदे धर्म राय की कान चुकाई। सब चूके जम के छंदे जप मन हर हर नाम गोविंदे। वड़भागी गुर सतगुर पाया।

राम नाम नित गाइए घर दुख बसार नो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसार नहारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावन मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा हुई निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवां।

न उपाया हर का मंदिर तस्मय लाल गुर खोलिया पड़दा देख पई निहाल जिन चाख्या तस आया साध ज्यों गूंगा मन में बिस्मात आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया।

मुई अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुई निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तन सार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम होता। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंग

आप ही पुजारी, आप ही देवा, आपे जोग, आप ही जूता, नाग के प्रभ सदगी मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आप उपावन, आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही जरना, अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड़ भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसु करत जन्म फुनमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, आगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बां पकर सदगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तान मन तान अर्पो सब अपना, कामन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रा मांगन, तू पेखत सोभा मेरे आंगन। रखाओ आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो, मत बुसुरत

साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रभ सब में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे, रखाओ तिखा भूख बो तप्त व्यापया, शीतल पए हार हार जस जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बलाबल मोहल्ला पंजवां, गुरपुरा बड़ भागी पाइए, मिल साधु हर

आओ, जो जो निंद करे इन ग्रहण की, इस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई, जा को शब्द अखंड अपार।

तो प्रसन्न पै सगुर प्रभु कज बिघन नाथी जा का अंग दयाल प्रभ ताकि सबदास सदा सदा वड़े आईया।

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चत निभत रहे गुरु शब्द अखूट।

अपनाया। सेमर सेमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल मुहला पंजवां कर तर मस्तक थापया नाम दी नोदान। सबल सेवा पार ब्रह्म की ताकि नहीं हान। आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितवे साध जान जो लेता मान। रघाव सरण परे चरणारविंद जन प्रभु के प्राण। सहज सुफाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल मुहला पंजवां चरण कमल का आसरा दीनू प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे

मर मर जन्मे जिन बिसरिया जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया आन दिन रंग राता तांत सहज आनंद करा पूर्ण पैयास सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रखा तुण स्वामी अरदास जान तुम अंतर जामी आन तन अंतर रब रहे नानक के स्वामी।

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बख्शेन अपनी कल तारी मन बांझ तो फल दितेन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दो पदे कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवनी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए अपय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघ अघ गुण राती नयन दर्श रंग लाए।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

कहो नानक ऊचो ऊचा बलावल महला पंजवा बिन हर कामना आवत हे जा सो राच माज तुम लागे मोह मोहनी मोहावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मह जावत हे उर जरे इंद्री रस प्रेरे हो बिखिठ गौरी कावत हे तिरण को मंदर साज सवारे हो पावक तले जरावत हे ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मोड पर ठाडे केस गए फेरावत हे दिटन आवे अंध अज्ञानी सोई रहो मदमावत हे जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी जूफा हावत हे कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत हे बिलावल महला पंजवा हार घर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान तंबोली रखाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जो वड़ पागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मोली कहो नानक प्रेरवि सुहागन आतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साध दयारा तब ते दुरमत दूर पई रखाओ पूर्ण पूरे हो संपूर्ण तीतल सांत दयाल दई काम क्रोध न अहंकारा तंते हुए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते यो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोझ पई।

ऊपर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज भ्याजन कंचन छाडन, बैरी संघ हेत साजन त्याग करे। होमन तौरा अनहोमन मीठा, दिखिया मैं लपटाए जरे। अंध कूप मैं परे हो प्राणी, परम गुबार मुँह बंद परे। कहो नानक प्रभुत दयारा, गुर पीटे काढ़े वहां भरे। बिलावल महला पंजवा, मन तरसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे।

दयाल स्वामी सर्वस संत जना तनमाल नानक जाचक दर्श प्रामंग है संत जना की मिले रवाल बिलावल मोहल्ला पंजवां सिमरत नाम कूड़ जतन पए साध

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल मोहल्ला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो

बनायो आप अपने सेवक की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत।

हस प्रदीने जगत उधारन नावखण परताप दुग बिन से सुख अन्न प्रवेशा कृष्ण बुझी मन तन सज तराप अनाथ को नाथ शरण समर्थ सगल सहित को माई बाप भगत वछल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप बिलावल मोहल्ला पनवा जिस ते उपजिया तिसे पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होए कल्याण रखाओ गुरपूरा पेट्यू बड़ भागी अंतर जामी सुड़ सुजान हाथ दे राखे कर अपने बड़ समरथ निमाणिया को मान ब्रह्म पै बिनस गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास आराध्य नानक सदा सदा जाएगे कुर्बान बिलावल महला पंजवा दोवे थाव रखे गुरसूरे थलत पलत पार ब्रह्म सुवारे कार्ज होए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आमन जान रहे थिद पाई जन्म मरण के मिटे बसूरे प्रम पै तरे छुट्टे पै जम के कट कट एक रहा पर पूरे नानक शरण परे दुख पंजन अंतर बार पेख हजूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे कबु न होवो दृटिया गोचर जी के संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूरे गे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार संहारी सास सास प्रभ तुम्हें चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल महला पंजवा तन तन जोबन चलत गया आराम नाम का भजन न कीनो करत विकार निस्पोर भया रहाओ अंग प्रकार भोजन नित खाते।

मूल नसो प्रीत बने अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर कहो आकत कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताची दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रघाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

दूत धुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी, नानक उचरे हर की जया। बिलावल मोहल्ला पंजवां, बिन पय भगती तरन कैसे, करो अनुग्रह पत उदाहरण। राग स्वामी आप भरोसे रखाओ, सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत। दिखया राता स्वान जैसे, औद विहावत अदक मुहावत। पाप कुमावत बुढ़े ऐसे, सरण दुख पंजन पुरख नरंजन। साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेश नास अग खंडन। नानक जीवत दर्श दिसे,

आपे मेल लए। जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अभमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए। महामुत अजान अज्ञानी रखे थार दए। कहो नानक गुरपुरा फेट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी उपजो चाओ मिलन प्रीतम रहे ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि अंधले टेक निर थन थन पायो। प्रव नानक अनक गुनी राग बिलावल महला पंजवां कर तेरवां पड़ताल।

रूप त्यावो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आ मोहि नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज समानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायोरी अरहाओ दूजा बिलावल मोहल्ला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रखाओ आहे मन अवरना पावे चरणावे चरणावे। उलज्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एके हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मान हरस कूटी है संग साधु उल्टी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बिलावल महला नावा दो पदे एक ओहकार सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पय जी जानो। रघाव गज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं जब ही राम बखानो नारद कैत सुंदर रू बारक भजन माए लबटानो अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाए हैरानो। नानक कहत भगत रशक हर निकट ताए तो मानो बिलावल महला नावा हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसा न चूके।

सुन मोहे अनहत बैन, हर सरण सूर गोपाल, प्रा भगत वस दयाल, हर निगम लह ना पेव, निर करे मुनजन सेव, दुख दीन दर्द निवार, जाकी मां बिगड़ी कार, ताकी मितना

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड महला पंजवां जा को राखे राखन हार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जो है।

आनंद संत जपे गुर दियो भगवंत संगत के मुख उज्जल पए सगल तान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

अहंकारी जन पर माने निंदक वेकारी गुर कै सिख सदगुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया तुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरतै घर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अवमानी की जड़ सर पर जाए नी तरिया सतगुर कर तेरी करके पारा खो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा के सिमरन पैज सवारी राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिए कही है मिले असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रब रही है रखाओ संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले।

या मंदिर में कौन बसाई, ताका अंतन को उपाई रगाओ। ना यो गिरही ना उदासी, ना यो राज ना भीख मगासी, ना से पिंड न रग तू राती, ना यो ब्राह्मण ना यो घाती, ना यो तपा कहावे सेख, ना यो जीवे ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवे, जो रोवे तो ही पद खोवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीव मरन दो मिटवाया। कहो कबीर यो राम की अंश, जस कागद पर।

जैसे गाय का बाछा शूटला, थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया, पुर पीड़त अलख लखाया, जैसे बिखे हिद परनारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा।

कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे ध्याना अभी कभी किशु न जाना तेरा एको ना पछाना ना जाना हरे मेरी कमन गते हां मूर्ख अज्ञान शरण प्रा तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रखाओ तहू जीड़ा उब चढ़त है कभू जाए पयाले लोभी जीड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लखाए मंडल।

ओ मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा। तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए। राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मध बांसुरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा। राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सासी गारी रखाओ। आखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पनम चूला करत अकेला, जल ते उपत हुआ। पंच तत कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दु जरे चिरागा, चौ कुंड पीतर राखे, दस पातो पंच संगीता, एक पीतर साते, पिन पिन हुए पाद दिखावे, सभो निरारी पाखे। तार कर नृत होवे दिन राती, हड़कड़ वाजे तूरा, एक नचावे एक पवावे, एक आए जाए हुए तूरा। कहो नानक

भय परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे टूका तृप्त न पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे क्याल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जपया नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां करन करा मनसोई आना दिसे कोई ठाकुर मेरा सूड सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीवत अमर पय ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंध रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब कुछ तेरा सब बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हौ तेरा तू मैं मन मूठा राम करी महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी जिस गुर कहो सद बलिहारी ताज मारे पूरे

लोक पचारा अंध कमाए, खड कर्मा आर आसन धोती, भागट ग्रे पड़े नित पोथी, माला फेरे मंगे बेभूत, ए बिद कोई न तरे उमीत। तो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रैगुण की ओस उत्तरी माए, चतुर्वेद पूर्ण हरनाए, नानक तिसकी सरणी पाए। राम कली महला पंजवां।

उड़ चलना, राज रहो तू संग सुपना रहाओ, बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जूबन लागा दुर्गंध, त्रिति व्यवस्था संचे माए, बिरद पया छोड़ चल्यो पछताए, किरण काल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेहे, पशु प्रेत मुग्ध ते बुरी, तिसे ना बूझे जेन ए श्री, सुन करतार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छुड़ावो छुटके बंद, बक्स मिलावो

अंत की बार ऊठ सिधारे ना बिना सब चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ते सा माया मूठ परानी रहाओ तीर्थ नाये न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहे रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए रखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्र तुम रे हाथ जित लावे तित लागे स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम कली महला पंजवा जो कुछ करे तो ही सुख जाना मन असमझ सा संगपति आना डोलन ते चूका ठहराया सत महे ले सत समाया दू गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी मां पुरख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जय राखे सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है सर्व आनंद जब दर्शन पाइए राम गुणा नित नित घर गाएगे।

रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीरज मद पूरा तेज समाध तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदृष्टि पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उत्त

पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होए निर्मल जियो, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन घर भगत नहीं छुटकारा, सोहर भजन साध कै संग, मनतन रापे हर कै रंग, छोड़ सियाण प्रभो चितराई, मन बिरहर नावे जाए ना काई, दया धारी गोविंद गुसाई, हर घर नानक टेक टकाई, राम करी महला पंजवा, संत कै संग राम रंकेल, आगे जमस्यो हुए ना मेल, अंगबुद का पया विनाश, दुर्मत हो

पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जस कर्म तरण तारण प्राते रो नाओ एका शरण गही मन मेरे तुद बिन दूजा ना ही ठाओ रहाओ। जप जप जीवा

सागर तरियो बाशर खोज खेद न पायो नए पुनरोज सिंध समायो कट के माघे करण हार कहो किस अज जनाघे जो छूटो तो जाए पयाल जो कढ़ो तो नजर निहाल पाप पुन हमारे बस नाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली मोहल्ला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे बया पिया तोहे उदम करे गाडर जो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साज तना रहाओ ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सदगी चूरे करे विकार जीरे के ताई गाफल संगनत हुआ जाई तरत तो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाग सिर छाने जिन दिया तसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पय दयाल जो मन हुआ सादरवाल हस्त कमल लड़ली नू लाए नानक साचे सास समाए राम कली मोहल्ला पंजवा राजा राम की शरणाए निरपो पय गोविंद गुण गाव साध संग दुख जाए रघाव जाके राम बसे मन माही तुजन दुत्र पेखत नाही अगले काशवारे अपने हर हर नाम रसनित जपने जिसके मस्तक हाल गुर तरे तो दास अंदेशा काहे करे जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुर ऊपर कुर्बान गुर परमेश्वर पेट निहाल तो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिक्र पा करे साध संग सो पव जल तरे अमृत पीवो साध प्यारे मोह खूजल साते दरबारे अंध करो ताज सगल विकार नानक हर जप उतर हो पार राम कली मोहल्ला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दिस जागे ऊपर चरण तले आकाश कड़मे सिंध की ओ प्रगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमकन बिसरे जी भगतन कह आठ पैर मनता को जाप रहाओ प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनू साबन सूद पय ते निरपो डरता फिरे हुंदी कौ अणहुंदी हिरे देही गुप्त बदेही दीसे सगले साज कर जग दीसे ठगन हार अन ठगदा ठगे बिन वखर फेर फिर उठ लागे संसभा बिन करो बखियान सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोय नानक ताकी परम गद होय राम कली मोहल्ला पंजवा जो तुझ पावे सो थिया सदा सदा हर की शरणाई प्रभु नाही आन बिया रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दिसे इन में किशु न संग लिया दिखे ठकोरी खाए पुलाना माया मंदिर त्याग गया निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जो में कृत पया पूर्व कमाने छुडे नाही जम दूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा तृष्णा बूझे बहुत हया असाध रोग उपजिया संदूखन दे बिनासी महा खया जिन्हें निवाजे तिन ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्मया राम कली मोहल्ला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ दर्शन पेहत होए निहाल जाकी तूर काटे जमंजाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्ज सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतत उदाहरण कृपा निधान सदा सदा जयगे कुर्बान निर्मल मत दे जिस दान तजे विकार बिन से अपमान एक तिहाई के साध के संग पा बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास कट कट रब रया गुणतास दर्श दे तारो प्रव्यास नित नानक चितवे सच अरदास।

सेवा राम रवीजे नानक ना मिले कृपा प्रभु कीजे राम कली महला पहला अंतर उद्भोज अवर न कोई जो कहिए सो प्रभु ते होई जुगे जुगंतर साहिब सरसोई उद्भुत परलो अवर न कोई ऐसा मेरा ठाकुर गैर गंभीर जिन जपया तिन ही सो पाया हर के नाम न लगे जम तीर रखाओ नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल जेवा सूची साचा बोल हर दर साचा नही रोल एक बन में बैसे डुगर अस्थान नाम सार पते अभमान ना बिना क्या ज्ञान ध्यान गुरमुख पावे दरगे मान हट अंकार करे नी पावे पाठ पढ़े ले लोग सुनावे तीर्थ परम सो व्याध न जावे ना बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंद कवे ना रखाई मनवा डोले नर के पाई जंपर बाधो लय सजाई बिनावे जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मुन देवा फट निग्रह ना तृप्तावे पेवा शब्द विचार गह गुर सेवा मन तन निर्मल अभमान अपेवा कर्म मिले पावे सच नाव तुम शरणागत रहो सुपाव तुम ते उपजो भक्ति पाओ।

जन्मे त्यो मरण पया, जिम रस पो किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुखेत वधाए, की नाम सार है परम गया। रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, उन दान इसनान ना संजम, सास दिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारियो, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, हैर्स निंदा ताद पराई, हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुर शब्द ना गात पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करें टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आवद देखे, सागत मान अब महान भया, जिसका इहो तान तान सो फिर लेवे, अंतर से साधु पया, अंत काल किस साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, देख कुटाम्ब मायाग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जहाँ आए ता तने पठाए, क्याले तने बुलाए लया, क्यों कुछ करना सो कर रहया, बक्सन हारे बक्स लया, जिन तो चाख्या राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुग्ध पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भ्रगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी मोहल्ला पहला, जत स संजम साज दृढ़ाया, सा सदर हसीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिवलागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगनपुर दृढ़ समय सार, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन पर पुरलीना, जेवा रंग रसीना, मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना, एक मैं सर्व सर्व मैं एका, ए सब गुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, तो प्रभ लखन ना जाई, दीपक ते दीपक परगासया, तेर पवन जो दिखाई, सत्य तख्त सच महली बैठे, निरपो ताड़ी लाई, मोहे गया बैरागी जोगी, काड़ काड़ किंगरी वाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सुखाई, राम कली मोहल्ला पहला, औ हठ हस मड़ी करशाया, तारण गगन कल तारी, गुरम केती शब्द उधारी, संतो रखाओ, ममता मार ओ में सुख, तिर पवन जो तुम्हारी, मनसा मार मने मैं राखे, सतगुर शब्द विचारी, सिंगी सुरत अनाह दवाजे, फड़कड़ जोत तुम्हारी, पर पांच बेण तई मन राखिया, ब्रह्म अग्न पर जारी, पांच तत् मिल अहर्ष दीव, निर्मल ज्योत पारी, रस लौके इव तन किंगुरी, वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी मैं आसन औदू, अलख अगम अपारी, काया नगरी इव मन राजा, पांच वसे विचारी, शब्द रवे आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी, काल विकाल कहे कहे बपरे, जीव तुआ मन मारी, ब्रह्मा बिशन महेश एक मूर्त, आपे करता कारी, ताया सो तरे पवसागर, आत्म तत्व विचारी, गुर सेवा ते सदा सो पाया, अंतर शब्द रव्या गुणकारी, आपे मेल लय गुणदाता, होमे तृष्णा मारी, त्रै गुण मेटे चौथे वर्त, एहा भगत निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने, हृदय एक मोरारी, मनवा अस्थिर शब्दे राता, एहा करणी सारी, वेद बादरा पाखंड औदू, गुरमुख शब्द विचारी, गुरमुख जो कुमावे औदू, जात सत शब्द विचारी, शब्द मरे मन मारे औदू, जो जूत विचारी, माया मोह पवजल है अवधू, सब तरह कुलतारी, सब सूरज उचारे औदू, बाणी भगत विचारी, यो मन माया मोहया औदू, निरसे शब्द विचारी, आपे बगसे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी, राम कली मोहल्ला तीजा, अष्टपदिया एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा, कन्नी पाए जोगी, खिंता कर तू दया, आमन जान विपूत लाए जोगी, ता तीन पवन जन लाया, ऐसी किंगरी बजाए जोगी, जित किंगरी अनहद वाजे, हर सिंह रहे लिवलाए, रहाओ ससंतोख पद कर चोली जोगी, अमृत नाम पुत पाई, ज्ञान का डंडा जोगी,
سنگھی سرت بجائی مان درڑ کر آسن بیل جوگی

दोए पत लाए जोगी, यो शरीर का डंडी, गुरमुख होवे ता तंती वाजे, इन वेद तिसना खंडी। हुकम बूझे तो जोगी कहिए, एक स्यो चित लाए, सहसा टूटे निर्मल होवे, जो जूते पाए, नदरी आमदा सब कुछ बिन से, हर से तीच लाए। सतगुर नाल तेरी भावनी लागे, ता एसो जी पाए, यो जोग ना होवे जोगी, जे कुटम छोड़ पर पवन करे, गृह शरीर में हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्राप लह। यो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, जिसमें रोग वड्डा तिस नाम आया, अनेक जतन पे करे जोगी, रोग न जाए गवाया, हर का नाम औखद है जोगी, जिसनु मन नमसाए, गुरमुख होवे सोई बूझे, जोग जुगत सो पाए, जोगे का मार्ग विखमय जोगी, जिसनु नदर करे सो पाए, अंतर बार एको वेखे, विचो परम चुकाए, विण वजाई किंगरी वाजे जोगी, सा किंगरी वजाए, कहे नानक मुक्त होवे जोगी, साचे रह समाए, राम कली महला तीजा, भगत खजाना गुरमुख जाता, सगुर बूझ बुझाई, संतो गुरमुख दे वड्याई, रहाओ सच रहो सदा सहस उपजे, काम क्रोध विचों जाई, आव छोड़ ना मिलन लागी, ममता सब जलाई, जिते उपजे तिसते बिनसे, अंते नाम सकाई, सदा हजूर दूर न देखो, रचना जे नरचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर, सच्चे सिंह लवलाई, सत संगत में नाम निर्मोल, वडे भाग पाया जाई, परम ना भूलो सतगुर सेवो, मन राखो इकठाई, बिन नावे सा भूली फिरदी, बिरथा जन्म गवाई, जोगी जुत गवाई हंड, पाखंड जोग ना पाई, शिव नगरी में आसन बैसे, गुर शब्दी जोग पाई, तातर बाजी शब्द निवारे, नाम से मन आई, यो शरीर सर्व रखे संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई, त्रैगुण अचेत नाम चेते नाही, बिनावे बिन सजाई, ब्रह्मा बिशन महेश त्रै मूर्त, त्रैगुण परम भुलाई, गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटे, चौथे पद लिवलाई, पंडित पढ़े पढ़वाद वखाने, तिना बूझ ना पाई, बिखिया माते परम भुलाए, उपदेश कहे किस पाई, भव जना की उत्तम बाणी, जुग जुग रही समाई, बाणी लागे सोगत पाए, शब्दे सच समाई, काया नगरी शब्दे खोजे, नाम नवंग निध पाई, मनसा मार मन सह समाना, बिनस उस्त कराई, लोयन देख रहे विस्मादी, चित अधिष्ट लगाई, अधिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मलाई, हाँ गुर सराई सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई, नानक एक कहे बेनंती, नावो गत पद पाई, राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रखाओ, हर बिन सब से महिला संतो, क्याहो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाना मन नमसाई, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा था ए पाई, पवित्र पावन हे जन साचे, एक शब्द लिवलाई, बिन नावे होर पूज न होई, परम पुली लोकाई, गुरमुख आप शाने संतो, राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी था ए पाई, पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मललाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन नमसाई, पाणे ते सब सु पावे संतो, अंते नाम सकाई, अपना आप ना पछाणे संतो, ऊड़ करे वड्याई, पाखंड कीने जमनी छोड़े, ले जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप छाणे, गत मित तिनही पाई, यो मनुआ सुन समाध लगावे, जो तीजोत मलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सत संगत मेलाई, गुरमंग गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई, ताची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिव लाई, पए पंजन अद पाप नखंजन, मेरा प्रभ अंत सकाई, सब कुछ आपे आप वर्त, नानक नाम वड्याई, राम कली महला तीजा, हम कुचल कुचील आत अभमानी, मिल शब्दे मेल उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी, सच्चा नाम से आकट अंतर, करते आप सवारी रघाव, पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी, एक पेह करे फिर अभमानी, दिन जुए बाजी हारी, एक अंदन भगत करे दिन राती, राम नाम उरतारी, अंदन राते सहजे माते, है देहो में मारी,
पै बिन भगत न होई कभी, पै पाए भगत सवारी, माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता, आपे बख्श पंडारी, तिस क्या गुणा का अंत न पाया, हौ गामा शब्द विचारी, हरजू जपी हरजू सालाही, विचो आप निवारी, ना पदार्थ गुर ते पाया, अखुट सते पंडारी, अपने आप भगता नु आपे तुठा, अपनी कृपा कर कलधारी, तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गामन शब्द विचारी, जियो पिंड सब किश वे तुसका, आखण बिगम बिचारी, शब्द लगे सही जन निस्तरे, भौजल पार उतारी, बिन घर साचे को पार न पावे, बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सो ही पाया, मिर हार शब्द सवारी, ताया कंचन शब्द राती, साचे नाए प्यारी, ताया अमृत रही पर पूरे, पाएगे शब्द विचारी, जो प्रभ खोजे सही पावे, और फूट मुए अंकारी, बादी बिन से सेप सेवे, गुर के हेत प्यारी, सो जोगी तत् ज्ञान विचारे, हमें तिस नाम मारी, सगुर दाता तने पिछाता, जिसनु कृपा तुम्हारी, सतगुर ना सेव है माया लागे, डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सास चित्र सेवा की जय, जाए मिल गए राम मुरारी, अन दिन जागत रहे दिन राती, आपने प्रेपीत प्यारी, तन मवारी वार कुमाई, अपने गुरबिटों बलिहारी, माया मोह बिन सजाएगा, उबरे शब्द विचारी, आज गाए सही जागे, गुर के शब्द विचारी, नानक सही मुए जे नाम ना चेत, फल जीवे विचारी, राम करी मोहल्ला तीजा, नाम खजाना गुर ते पाया, तृप्त रहे आगाही, संतो गुरमुख मुक्त गल पाई, एक नाम से आकट अंतर, पूरे की वडियाई रखाव, आपे करता आपे पुहता, देंदा रिजक सवाई, जो कुछ करना सो करया, अवर न करना जाई, आपे साजे सिर चुपाए, सिर सिर कंधे लाई, जिस सिरे भो तां सुख पाव, सतगुर मेल मलाई, अपना आप आप उपाए, अलख न रखना जाई, आपे मार जी वाले आपे, जिसनु तिल ना तुमाई, एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, छेबड़ पागी जिनी एक को जाता, सत्य रहे समाई, आप स्वरूप से आना आपे, कीमत कहन न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम फुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरे लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया, सगुर बूझ बुझाई, एक ना ना वो आप फुलाए, एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा साला है हो संतो, जिदी वड्डी वडे आई, जिसमें अवर न कोई राजा, कर्त पावस बंट मनाई, न्याओ तसे का है सा साचा, विरले हु मनाई, इसनु प्राणी सदा त्याव हो, जिन गुरमुख बंट बनाई, सगुर पेटे सोजन सीजे, जिस हृदय नाम साई, सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्मात, मेरा प्रभ रविया सर्वथाई, राम कली महला पंजवां, अष्टपदियां, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, किन्ही किया प्रवृत्त पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल पोयंगम साधे, मोहे दीन हर हर आराधे, तेरा भरोसा प्यारे, आ ना जा ना वेसा, हरहाओ किन्ही ग्रिओ तय बणखण पाया, किन्ही मोर अधूस सदाया, होई कहतो आनन पहोती, मोहे दीन हर हर ओढ़ लीती, किन्ही कया हो तीर्थवासी, कोई अन तज पया उदासी, किन्ही पौन सब धरती करया, मोहे दीन हर हर दर परया, किन्ही कया मैं कुले वडे आई, किन्ही कया बाब उपाई, कोई कहे मैं तरे पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा, किन्ही कुगर नृत कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दीन हर हर हर त्याया, किन्ही सिद्ध बो चेटक लाए, किन्ही पीघ बो थाट बनाए, किन्ही तंत मंत बो खेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहस्यो मंडत, कोई करे आचार सुपरणी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म धर्म जुग सोधे, बिन नावे ओ मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साह संग पाया, बूझी तिसना महा सीत लाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी पे जिंतु करया, माटी काले दिहोरा करया, उगत जोत ले सुरत परीखया, माद गर्भ में जिंतु राखया, राखन हार समार जना, सगले छोड़ बीचार मना रहाव, जिन दिए तुद बाव महतारी, जिन दिए प्राद पुतहारी,

सगल जोन मैं तू सिर तरिया अब तू सीज पावे नी सीजे कार्ज सबरे मन प्रव त्याई जे ईगा ऊहा एक ओही जद का देखिए तत तत ओही ते सेवत मन आरस करे जिस विसरे एक निमक न सरे हम अपराधी निर्गुनियारे ना के सेवा ना करुमारे गुर बोहत वड भागी मिलया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली मोहल्ला पंजवा काऊ बिहावे रंग रस रूप काऊ बिहावे माए बापूत काऊ बिहावे राज मिलक वापारा संत बिहावे हर नाम आधारा रचना साज बनी सबका एक तनी रहाओ काऊ बिहावे वेद अरबात काऊ बिहावे

ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारिये, चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा, नाम नरहर निदान जिनके, रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल, सास सास त्याना केल खरना, ना पुन चरणा नाम जमकी त्रासहरा, बिनवंत नानक राह जन की, चरण कमरे आसरा, गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जान नहीं, देख चलत दयाल सुन भगत वखान नहीं, जी जंत सब तो त्यावे पुरख पद परमेश्वरा, सर्व जाचक एक दाता करना में जगदीशरा, साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मान नहीं, बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछान नहीं।

आठ पैर अपना प्रभ सिमरे, एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन प्रलगा मीठा पाणा, तब इश पुन्नी आस पूरी मिले सद गुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख बसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत श्लोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नानक प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमर गए जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीशरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक, हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एको तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तिसका तन जोबन तन माल जियो, ससदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक, तदन उतरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक, धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध पया वड पागी हो ग्रे प्रगटे प्रभ आए जियो, ग्रे लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ।

वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर तेरे पमसार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाय तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझे सूझे पड़ पड़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा तदे धर्म तरे तरमापुर गुणकारी मन धीरा तदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोर बोसज पूरा करते की मित करता जाने कहे जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिग खाया गोरस गीत बादनी पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुरस कहे अमृत लया मन तन सा सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एक को एक कहे सब कोई होमे गर्भ वे आपे अंतर बार एक बिछाणे क्यों कर मैल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो एक को सृष्ट सबाई एकंकार अवर नहीं दूजा नानक एक सुमाई इस करते को क्यों गए राखो अफरे तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लाभ लोभ मोहताज विगूते इवता फिर पछताई एक सरेवे ता गत मित पावे आमन जान रखाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एक को पावर पवे ते लोए एक को बूझे सूझे पत होए ज्ञान जान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लहे जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तूर्म जोत उजाला तीन पण में गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसे निजर तारा उत्तम तब सवारन हारा इस एके का जाने पेओ आपे करता आपे देओ उगवे सूर असर संघारे ऊचो देख शब्द बिचारे ऊपर आद अंत लोए आपे करे कसे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मान मुख सोए प्राप जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पद होए अराजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ मार रात दिन अंत रहे रंग राता तीन पौन जो चारे जाता जिन जाता सो तिस ही जेहा आत निर्मायल शीश देहा रे श्री राम हृदय एक पाए अंतर शब्द सात लिवलाए रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रहे न कोई इस पे करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेवे पतमती लाज मरंती मर गई भूगुट खोल चली साध दीवानी बाबरी सिरते संक टली प्रेम बुलाई रलीस्यों मन में शब्द आनंद लारती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लहा नाम रतन जब सार लब लोभ बुरा अहंकार लाड़ी चाड़ी लाए तबार मानमुख अंधा मुग्ध गवार लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग लहा ना पूंजी वे साहो नानक सची पात सच्चा पात साहो आए विगूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ आस सहल नीच कर होए आस देख निवे जिह दोए आद होए ता मुक्त से आना भगत बिहुना जग बोराना सब में वरते एको सोए जिसनु कृपा करे तिस प्रगट होए जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन्म मरण नहीं तंदा तैर जो दिसे सो आपे आप उपाय आपे कड़ताप आप अगोचर तंदे लोई जोग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई ना विहुना मुक्त के होई।

सर्वे थान सनंतरी तू दाता दातार जय देखा ते एक तू अंत न पारावार थान सनंतर रभरया गुर शब्दी विचार अण मंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखन हार दया करे प्रा मेल रहे खिर में टाए उसार।

ले गया ने तीर्थ नहाइए तो फल पाइए मैल न लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोल योग जुगत विदसाई हाटी बाटी नींद न आवे पर कर चितना डुलाई बिन नावे मन टेक न टेकई नानक पूख न जाई हाड पटन कर गुरु दिखाया है जे सच वापारो खंडत निंद्रा अल्प आहारं नानक तत् विचारो दर्शन पेख करो जो गिंदरा मुंदरा चोली खिंता बारह अंतर एक सरेव हो खड़ दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बहुत चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाइए अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हो में ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवार गुर के शब्द सो समझ परी खिंता चोली पर पुर रहे नानक तारे एक हरी साचा।

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं मेड़।

कथिए ले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कथिए ले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाई अले क्यों निरभो कर जाइए सहे संतो का आसन जाने क्यों शेदे बैराइए गुर के शब्द होमे बिख मारे ता निरकर हो गए वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे सुमाई एस

रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले। इस कथा का दे विचार, भवजल शब्द लंघावन हार, पवन आरंभ सदगुरु मत वेला, शब्द गुरु तुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। एक सब्जित कथा विचारी, गुरमुख होमे अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाइए सार, जित गर्भ जाए सो कमन आहार। हिवे का घर मंदिर अग्न पिराहन, कामन गुफा

सब तीर्थ गह, ओ तपा कैसे परमगत लह, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा, सो तपा ये ओ तप का ले, सदगुर नु मिले शब्द समाले, सदगुर की सेवा यो तप प्रवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी, रात दिस उपायन संसार की वर्तन, गुरमती कर चानना आनेर बिनासन, हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण, सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण, सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम, ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म, आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए, जिसका भोजन नानका विरला पाए कोए। महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जे पढ़ कर भोजन करेन, उदरे कारण अपने बैले पेख करेन, अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौन करेन, पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन, पौड़ी अंबर तरत बछोड़ेन वे सच्चा असराओ, घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ, सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ, सच्चा आप तगत सच्चा बै सच्चा करे न्याओ, सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, रैनायर महाय अनंत है कूड़ी आवे जाए, भाणे चले अपने बहुती लय सजाए, राय नायर में सब किश है कर्मी पल्ले पाए, नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए। महला तीजा, है जे सतगुर ना सेवे हो विच हो में जन्म विनाश, रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास, बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिग वास, जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास, ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास, जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यो विचे गिरे उदास, जन नान करे कराया सबको क्यों पावे तिब हर गुणतास, पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी, आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी, सिमरत शास्त्र साजियन पाप पुन ग्रंथ गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी, तबे आपे आप वर्तदा आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए, जो से रते अपने तेन तन लोभ रत न होए, पए पए तन खीन होए लोभ रत विचो जाए, ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत महल गवाए, नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए। महला तीजा, राम कली रामन वसया ता बनया सीगार, गुर के शब्द कमल बिगसया ता सौंपया भगत भंडार, परम गया ता जा गया चूका अज्ञान अंधार, देश नु रूप अत अगला जिस घर नाल प्यार, सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार, मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार,
फिर घर भगती सीगार कर निज जम्मे हुए खुवार सहे सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो जगह संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सतगुर सेवे सात न आवई दूजी नाही जाए जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मण मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सुखा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब तावे आप निचल अचल है होर आवे जाव है सदा सदा घर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच्च महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए बहे गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केल कटन हार नाम जपे नाम आराध्य ते जन को करो सब नमस्कार मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी खुद जेवड़दाता नाहे किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो होमे जाइए रस का सादा बार सच्ची वडे आईए जिसनु बख्शे तिस दे आप लय मिलाइए तट अंतर अमृत रखियोन गुरम किसे पे आई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां उत सुपुत करेन जे सतगुर पावे सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र प्यास सुख नारद बचन सब सृट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानकाए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंगला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने निर झूठो झूठ बोलेन कूड़ कु सत कुमान दे पर निंदा सदा करेन ओए आ डुबे पर निंदगा सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखद जेती सिट सब कीती एक कूड़ कु सत लायन मनमुख विभूति गुरमुख सदा त्याई है अंदर घर प्रीति जिन को पोते पुन है तिन वात से पीति नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਹੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਖੱਟੇ ਭਾਓ, ਭਾਵੇ ਆਵੋ ਪਾਵੇ ਜਾਓ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਏ, ਆਪੋ ਆਪੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੈ ਭਏ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੁਣਾਏ। ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਰੇ ਸੁਮਾਵੇ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾਵੇ। ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਏ। ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਡਾ ਬੇਪੂਤ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ। ਜੋਗ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁੱਤ ਗਵਾਈ, ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਲਕਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪੇ ਆਖਣੇ ਆਪੇ ਜਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਸੂਜ ਨੇਊ ਪਲਗਲ ਪਾਵੇ। ਤੂਤ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ, ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਵਿਣ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਉਹ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਾਉ ਦਸਾਏ ਉਥੇ ਕੋ ਜਾਏ। ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਪਿਸਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਘਰ ਜੁਗਤ ਦਸਾਈ। ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਕਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਟਾਊ। ਚੀਰੀ ਆਈ ਟਿਲ ਨਾ ਕਾਊ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ। ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ, ਸਭਨਾ ਕਾਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ, ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਏ ਕਾਇਆ ਕੋੜ ਗੜ। ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖਰ ਨਾਮ ਪੜ। ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਖਵਾਇਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਿਤ ਕੜ। ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਸਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਸੁਖੀਆ, ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਸਤ ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਈ ਕੇਸੀ। ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਸਤ ਰੁੱਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ। ਆਪ ਸ਼ਾਵੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ, ਨਾ ਸਹਸਤੀ ਬੱਧੇ ਸੰਗਲ। ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਕਾਉ ਚਰੇ, ਜਿਸ ਹਸਿੱਧ ਦੇਵੇ ਜੇ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤ ਆਏ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। ਜਿਸ ਕੜ ਪੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ, ਸਭ ਕੜ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ। ਜਿਸੇ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਤਿਸੇ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ। ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਸਿਰ, ਤਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੌਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰੇ, ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ। ਬੋਲੇ ਈਸ਼ਰ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਜੋ ਤੂਪੇ ਆਪ, ਪੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਸੰਤਾਪ। ਔ ਹੱਠ ਪਟਣ ਮੈਂ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਸੇ ਪੁਰ ਚੜੇ। ਬੋਲੇ ਗੋਰਖ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਜੇ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਸ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਢ, ਤਿਸ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਧ। ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਪਾਖੰਡੀ ਜੇ ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੇ, ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰ ਜਾਲੇ। ਉਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨਾ ਦੇਈ ਝਰਣਾ, ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਣਾ। ਬੋਲੇ ਚਿਰਪਟ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਪੈਰਾਗੀ ਜੇ ਉਲਟੇ ਬ੍ਰਹਮ,
गगन मंडल मैं रूपे थम आए निस अंतर रहे त्यान ते बैरागी सत्समान बोले परतर सत स्वरूप परम तत् मैं रेखना रूप मुखला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीव है जोत कान पड़ाए क्या खाजे पुत आसत नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रहे हे आओ तूप शाम जे सम कर सह

का से भर उधरिया सगल संसार पौड़ी सिबत सलाहन भगत विरले दितियन तौपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मद कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलिया, एक देव रात मुरारी, महला पंजवा, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया तिन

ठगर ले आया साथ पे इको जेह सदगुर सराफ नदरी विच दो कड़े ता उगड़ आया लोहा बो तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आ।

मुद्रा मदक सहतुन लागी सुगमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुसंजम रस गहने देओ रे तुरत प्याल सुधारस अमृत यो महारस पेओ रे निजर तार चोवे तन निर्मल ए रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछे एह महारस सचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन तारा सुख मन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उनमा चिड़ा मद रस चाखिया तेर पवन पया उजियारा अरहाओ द्विपर जोर साई पाठी पियो महारस पारी काम क्रोध किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गमत सदगुर ते सुध पाई दास कबीर तास बंद माता उचकना कब हो जाई तू मेरो मेर परबत स्वामी ओढ़ गई मैं तेरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी भाव भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नौ मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपन तरनाही दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन होए मुक्त द्वार जाए बैकुंठ नहीं संसार निरपो के कर बजावे तूर अनगत बजे सदा परपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रखाओ जे सिमरन नाही ननकार मुक्त करे उतरे।

ले गगन मझारं वेदियले चक्कर पुहंगा पेटियले राय निसंगा टूकियले मोह मयास सदकीनो सूर गेरास जाब कुंभक पर।

मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रघाओ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीए

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ ना पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पारस है ना परस है, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रघा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नी समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रघाओ, देव सताने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगन अंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरुदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर दाती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गहे, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री

स्वामी तुम दुष्ट तारे हरण के। नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर घर राम रंगे। हर घर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो।

क्या भावे मन प्यास बहुत दर्शावे रहाव सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचे आवे कृपा करज पुरख विधाते सो सदा सदा तुल त्यावे कवन जोग कवन ज्ञान त्याना कवन गुणी री जावे सोई जान सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावे साई मत साई बुद्ध स्यानप जित निमकन प्राविसरावे संत संग लग क्यों सुख पायो हर गुण सदगी गावे देखो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लायो।

रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाया, तुन सुन नाम तुहारो जियो। ईगा ऊहा हर तुम ही यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासेओ।

हर हर हर मन त्याब हो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पए प्रभु ठाकुर, पुर कह शब्द सवारे, मधुसूदन जग जीवन माधो।

सदगुर ज्ञान मज्जन गए नीको मिल कलमल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे परस न परस भय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड गए साबत तब लग किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत सिउ मन मेल न करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन विश्वा जो डसिए तज सागत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद।

साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो सब तृष्णा पूख निवारे। पते पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंच पूत सब लगे देही गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गद पावो सत संगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बो नाचे जब उनमें कान कन हारे। सागत को अमृत बो सिंचो सब डाल फूल विस्कारे, ज्यो ज्यो निवे सागत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डे बिखारे। संतन संत साध मिल रही है गुण बोले परे पुकारे, संत संत मिले मन बिसे जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान खलक है हलक्यो सबे बिगारे, मेरे ठाकुर कह दीवान खबर होई गुर ज्ञान खड़ग लय मारे। राख राख राख प्रा मेरे मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तर अवर न काई मैं सतगुर गुर निस्तारे। छक्का एक राग माली गौड़ा महला चौथा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सह पंग गुर प्रसाद। अनक जदन कर रहे हर अंत नहीं पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश।

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर रख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया, हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया। हर हार हर उतारियो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले घर प्रवजाता, दुरमत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी घर प्रापाया, तिन पूछो घर की बाता, पाए लगो निद करो जुदरिया, हर मिल लो कर्म वेदाता, लिलाड़ लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्र आए मिले सुख पाया, सब केलभ पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाइये वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, सब सिद्ध साधक मुनजना, मन पावनी घर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो, रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेत्यो हर रायो, हरियान में लियो सदगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रमस्त के तुर लिखिया, गुरमति घर लिवलायो, पांच शब्द दर गए बाजिया, हर मिलो मंगल गायो, पतत पावन नाम नर घर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जो नी गालिये, ज्यो डोन जरे गलायो, मत दे घर प्र अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास पया गुर पाया, हर जप्यो परम पो भागा रगाओ, पय पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किल बिख खीन पय सां त्याई, हर उतारियो वडभागा, मान मुख रंग कसुंभ है कछुआ, ज्यो कुसुम चार दिन चागा, खिन मैं बिनस जाए परताप, दंड तरमरा एका लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीठ बो लागा, ताया कापर चीर बो फारे, हर रंग न लहे सुपागा, हर चारो रंग मिले गुर शोभा, हर रंग चलू ले रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारे, जो हर चरणी जन लागा, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरे मान भाज हर हर नाम गोपाला, मेरा मातन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्याय गे हर हर, मन जपगे हर जपमाला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया।

प्रसाद हर समर्थ की सरना जीव पिंड तनरास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मूल रब रया सरबत ठाई।

खाए ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जब तरह तेरा नाओ, लून खरामी नानक लाला, बगसे तुद वडियाई, आद जुगाद दया परदाता, तुद बिन मुक्त न पाई, मारू मोहल्ला पहला, कोई आखे भूतना ओ कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, पया देवाना साका नानक बौराना, हों हर बिन अवर न जाना रखाओ, तौ देवाना जानिए या पै देवाना होए, एक ही साहेब बारा दूजा अवर न जाने कोए, तौ देवाना जानिए या एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए, तौ देवाना जानिए या साहेब तरे प्यार, मंदा जाने आप को अवर पला संसार, मारू मोहल्ला पहला, इहो तन सरब रहे।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरते यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवे लागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है

एक सच्चा सब सेम दी तुर भाग मिला भाग होए। गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओ ना मितिया पवरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते सीतल करे मनूरह कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जीवड़ अवर न कोए। मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर के बजन आराध तू अन दिन गुण गाओ रखाओ। गुरमुख एको जानिए जिन सतगुर दे बुझाए। सो सतगुर सालाइए जिदू ए सोजी पाए। सतगुर छोड़ दूजे लगे क्या करन अगे जाए। जां पुर बदे मारिए बहुती मिले सजाए। मेरा प्रभ वे प्रवाहो है ना तिस तिल ना तमाए। नानक ते शरणाई पज पो आपे बख्श मिलाए। मारू महला चौथा कार दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर घर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भगती पाए तरे। भगत वछल हर नाम किरतार्थ गुरम कृपा करे। मेरे मन नाम जब उधरे त्रू प्रहलाद बिदरदासी सुत

परे उधरे जन नानक हर कृपा धारी उर तरे ओ नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाध प्यो लिवलाई साधक मुन जपया जति सती संतोखी ताया मुख इंदराध करव्या शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत तरिया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रघाओ सुर नार गण गंधर्वे जप्यो रिख बपरे हर गाया शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर घर नाम जपया हर घर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट तेतीस ते आयो हर जपत्या अंत न पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणतना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर ब्राह्मण पाया पुरतार कृपा हर नाम दर

प्रेनाम दृढ़ाय हर तीर्थ हर सावास रखाओ हर घर आप मिलाए गुर मैं दस्ते हर तन रास बिन गुर प्रेम न लभई जन वेखो मन निरजास हर गुर विच आप रखिया हर मिले गुर सावास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख कर परगास मनमुख पाग विहूणिया तिख मुइया कंधी पास गुरदाता दातार है हो मांगो दान गुर पास किरीम चुन्ना मेल प्रभ मैं मनतन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत घर दे समाणी जप हर हर कथा वडभागिया है उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुर पूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा निसदा कर गुरमुख अकथ कहानी ही रखाओ मैं मन तन खोज ठंडोलिया क्यों पाईगे अकथ कहानी संत जिना मिल पाया तुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुर पुरखे पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वडभागी गुर सेवया हर पाया सुगड़ सुजानी मनमुख पाग विहूणिया तिन दुखी रहन विखाणी हम जाचक दीन प्रभ तेरे मुख दीजे अमृत बाणी सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मिलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति हर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मेरे संगत श्रद्धा उपजे गुर सबदी हर चार।

अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव सरे पयो प्रसाद कृपा नित ठाकुर संत संग पद पाई कौ नानक त्रैगुण प्रमशूटा जो प्रापय सखाई। मारू महला पंजवां अंतर जामी सबद जाने इस ते कहां दुलारे हो।

असाध रोग उपजो तन पीतर तर तन काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवराखे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए सच्चा सोए सुख पाया फिर।

किसै बूझ जिन तू किया प्रव करण कारण एक रखाओ चेत मन में तस्यानप जोड़ सगले पेघ सिमर हर हर सदा।

कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मतकीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुब उपज, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्नी नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुरबिन दाता को नहीं, कीमत कहण न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुखे आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे,

तले उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मां सागर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तेल तेल, मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच विकार सुकृत, संग लगन सब सुख शत्र, मित्र सतर ना कशु जान, सर्व जी समत कर प्रगास, प्रचंड प्रगटेओ अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है करण लागे, मन ना पयो विकात, सीत मंद सुगंध चलेओ, सर्व थान समान, जहां साक्ष तहां लागेओ, तिल ना संका मान, तो पाए अपाए जो निवटे आवे, सीत ताका जाए, आप पर का कश ना जाने, सदा सहज सुपाए, चरण सरण सनात त्यो मान।

क्या जम्मण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर दिख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निरकर बैस रहे पोखाया, ताप्त रखे ठाक रखाया। कामल विगास हरे सर सुभर, आत्म राम सखाई है। मरण लखाए मंडल में आए, क्यों रही ये चलना परसाए। सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है। आप जो पाया जगत सुबाया, जिन सिरिया तिन धंधे लाया। सच्चे ऊपर अवर न दिस, साचे कीमत पाई है। ऐथे गोलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा धुंदू कारे। बारी खेल गए बारी गर, ज्यों

परवाह है, आप उपाय दान सुमाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलया सहज रजाई है। एक सोगी एक रोग वे आपे, जो कुछ करे सो आपे आपे, भगत पाव गुर की मद पूरी, अणगल शब्द लखाई है। एक नंगे भूखे पवे पवाए, एक हड़कर मरे न कीमत पाए, गात अवगत की सार न जान है, बूझे शब्द कमाई है। एक तीर्थ नाव है अन्न न खाव है, एक अग्न जलाव है देख पाव है, राम ना बिन मुक्त न होई, किद विद पार लंघाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम ना जपे अवाई, पज पज बूढ़े कूड़ कमाव है, कूड़ काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो सच समावे, नानक सच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू महला पहला, आपे करता पुरख बेदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सदगुरे आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है। आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत अहे सलाहा, गुर संगत ए वडाई है। जो जो संत भले प्रव तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करे पर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है। ओए जाग तरह न सूते दिस है, संगत कुल तारे साज परिस है, कालमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रह भगत लिवलाई है। बूझो हर जन सदगुर बाणी, यो जोवन सास गए दे पुराणी, आज काल मर जाएगे प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। छोडो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा, शायद कूड़ पते मन होमे, दो मार्ग पते पचाई है। छोड्यो निंदा तात पराई, पड़ पड़ दजे सातन आई, मिल स संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोडो काम क्रोध बुरियाई, होमे तंद छोडो लंपटाई, सदगुर शरण परो ता उबरहो, क्यों तरिये पवजल पाई है। आगे बेमल नदी अग्न बिख चेला, तिथे अवर न कोई जियो अकेला, पाड़ पड़ अग्न सागर दे लहरी, पड़ दजे मन मुक्ताई है। गुर पै मुक्त दान दे पाने, जिन पाया सोई बिद जाने, जिन पाया तिन पूछो भाई, सुख सदगुर सेव कमाई है। गुर बिन उर्ज मरे बेकारा, जम सिर मारे करे खुआरा, बाधे मुक्त नाही नर निंदक, डूबे निंद पराई है। बोलो साज पछाणो अंदर, दूर नाही देखो कर नंदर, बिघन नाही गुरमुख तर तारी, यो फौजल पार लंघाई है। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अबनासी, ना जीव मरे न मारिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है। ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बहे सचियारा, सागद कूड़े बंद पवाई है, मार जन्म है आई जाई है। गुर के सेवक सदगुर प्यारे, ओए बैसे तख्त सो शब्द विचारे, तत लह अंतरगत जान है, तत संगत साच वडाई है। आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुद सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख कर लिवलाई है। मारू महला पहला, केते जुग वरते गोबार है, ताड़ी लाई अपर अपारे, धुंदू काल निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है। जो शक्ति तने वरताए, जुत पाना तिवे चलाए, तिसे श्रीक न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है। गोते बूझो जोग चत आरे, घड़कर वरते उदर मझारे, जोग जोग एका एकी वरत है, कोई बूझे गुर विचारा है। बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, पौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है। गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी,
ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ

तोलाया। सेवक सेवह करे अरदास, तू आपे मेर बहाले पास। सबना जिया का सुखदाता, पूरे कर्म ते आया। जात सा संजम जे सच कमावे, यो मन निर्मल जे हर गुण गावे। इस बिख में अमृत प्राप्त होवे, हर जू मेरे पाया। जिसनु बुझाए सोई बूझे, हर गुण गावे अंदर सूझे। होमे मेरा ठाकर खाए, सहजे ही सद पाया। बिन कर्मा होर फिरे कनेरी, मर मर जम्मे चुके ना फेरी। बिख का राता बिख कमावे, सुख न कबहू पाया। बहुते पेख करे पेख धारी, बिन सबदे होमे कने ना मारी। जीवत मरे ता मुक्त पाए, सच्चे नाए समाया। अज्ञान तृष्णा इस तने जलाए, तेदी बूझे जे गुर शब्द कमाए। तन मन शीतल क्रोध निवारे, होमे मार समाया। सच्चा साहेब सच्ची वडियाई, गुर प्रसादी विरले पाई। नानक एक कहे बेनंती, नामे नाम समाया। मारू महला तीजा, नदरी भगतां लहो मिलाए। भगत सलाहन सदा लिवलाए, तौ सरनाई उभरे करते। आपे मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई। अंत सुख तेरे मन पाई, मंत्र सच्ची भगती राता। सच्चे स्यो चित लाया, होमे विच सजले शरीरा। कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर ज्ञान शब्द बुझाए। सदगुर ते सुख पाया, मनमुख अंधा अंध कमाए। बहु संकट जोनी परमाए, जम का जेवड़ा कदे ना कटे। अंते बहु दुख पाया, आमन जाना शब्द निवारे। सच नाम रखे उरथारे, गुर के शब्द मरे मन मारे। होमे जाए सुमाया, आमन जाने पर जब गोई। बिन सदगुर थिर कोई ना होई। अंतर ज्योत शब्द सुख वसया, ज्योति ज्योत मिलाया। पांच दूत चितवे विकारा, माया मोह का यो पसारा। सदगुर सेवे ता मुक्त होवे, पांच दूत बस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारो वारा। सदगुर भेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया। साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा। सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए सुमाया। करे अंदर को कर पाए, गुर के शब्द सहज सुभाए। ओथे सोग वियोग ना व्यापे, सहजे सहे सुमाया। दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा। कुसंगत बह सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया। सदगुर बाजो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत चुगे गुर शब्द निवासा। उड़े ना मूले ना आवे ना जाही, निरकर वासा पाया। काया सोधे शब्द विचार है, मोठ गौरी परम निवार है। आपे कृपा करे सुखदाता, आपे मेल मिलाया। सदगी नेड़े दूर न जानो, गुर के शब्द नजीक पछाणो। बिगसे कमल किरण परगासे, प्रगट कर देखाया। आपे करता सच्चा सोई, आपे मार जीवाले अवर न कोई। नानक नाम मिले वडियाई, आप गवाए सुख पाया। मारू सोलहे महला चौथा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सच्चा आप सवार नहारा, अवन सूस बीजी कारा। गुरमुख सच वसे कट अंतर, फैजे सच समाई हे। सबना सच वसे मन माही, गुर प्रसादी सहे समाही। गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चित लाई हे। सदगुर है ज्ञान सदगुर है पूजा, सदगुर सेवी अवर ना दूजा। सदगुर ते नाम रतन तन पाया, सदगुर की सेवा पाई है। बिन सदगुर जो दूजे लागे, आवे जाए प्रमरे अपागे। नानक तिन की फिर गद होवे, जे गुरमुख

वाला ही है। जिन सतगुर जाता तिन एक पछाता, सर्वे रब रहे या सुखदाता, आत्म तीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है। जिन को आदमी ली वड्याई, सतगुर मन वसिया लिवलाई, आ मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रब रहे या

बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार्ज पो जगदीश है, बल बल जाई प्रभ अपने ईस है, इस बिन दूजा अवर न दिस है, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीव है जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खसम हमारा, सिमर ना पुन्नी।

एक करबाई एक भूखे एक तृप्त अघाए सबसे तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगत संगराचा आपे गुप्त आपे गए प्रगट अपना आप सारणा सदा सदा सद हो मनहारा ऊंचा अगम अथाओ अपारा ऊने परे परे पर ऊने ये चलत स्वामी के कारणा मुगसाला ही सच्चे साहा नैनी पेखा अगम अथाहा करनी सुन सुन मन तन हरिया मेरे साहेब सगल उदाहरणा कर कर वेखे कीता अपना जी जंत सोई है जपना अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना संसभा जे वैसे प्रापासे आनंद मंगल हर चलत तुमासे गुण गावे अनखद तुन बाणी तै नानक दा चितारना आमन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देखे खेल अपारा आ उपाय उपामनहारा अपना की आ पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दुए कर जोड़ सिमरो दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारना तुद बिन दूजे के सालाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझन पए निहाला ए भगतां की कालना गुर उपदेश जपके मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटे सा बंधन त्यो परम मोह पर जालना जय राखे सोई सुखथाना ते जे होए सोई पल माना बिन से बैर नाही को बैरी सब एको है पालना दर चूके बिन से अंधियारे प्रड पए प्रापुरख निरारे आव छोड़ पए सरनाई जिसका साथ कालना ऐसा कोवड़ पागी आया आड़ पैर तिन खदमत आया ते जन के संग तरे सब कोई तो परवार सुधारना ए बख्शीस खदमत पावा आड़ पैर कर जोड़ तिहावा नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना मारू महला पंजवा सूर देखना फूल गवारा मिशन मुहारा चूड़ पसारा जग में कोई रहन न पाए नेत्र एक नारायणा गुरपुरे की पौसरनाई मोसूसा परम मटाई एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे को तरसे बो देवा सगल पत जा की कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख पंजन तो गुरपुरे ते पायना होर द्वारा कोई न सूझे तिर पवन तावे ता किसु न बूझे सतगुर साओ भंडार नाम जिस यो रदंत से ते पायना जाकी तूर करे पुनीता तुर नर देव न पावे मीता सत पुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेड़त पा

करो दया किरमायणा, निर्गुण को संग लेओ रलाए, कर कृपा मुहे टह ले लाए, पखा फेरो पीसो संत आगे, चरण तोय सुख पायना, बहुत द्वारे प्रम प्रम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संते संग रख हो, यो नाम दान देवायना, पै कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे, सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायना, मारू सोलहे महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमरे धरती अर आकाशा, सिमरे चंद सूरज गुण तासा, पौन पानी बैसंतर सिमरे, सिमरे सगल उपार जना, सिमरे खंड दीप सब लोवा, सिमरे पाताल पुरिया ससोवा, सिमरे खाणी सिमरे बाणी, सिमरे सगले हर जना, सिमरे ब्रह्मे विष्णु महेशा, सिमरे देवते कोड़ते तीसा, सिमरे जख दैंत सब सिमरे, अगणत न जाई जस गना, सिमरे पस पंखी सा पूता, सिमरे बाण पर्वत अवधूता, लता बली साग सब सिमरे, रव रया स्वामी सा मना, सिमरे थूल सूखम सब जनता, सिमरे सिर साधक हर मंता, गोवत प्रगट सिमरे प्रा मेरे, सगल पवन का प्रवतना, सिमरे नर नारी आसरमा, सिमरे जल जोश सा वरना, सिमरे गुणी चित्र सा बेते, सिमरे रैणी अर देना, सिमरे घड़ी मूर्त पल निमखा, सिमरे काल अकाल सोच सोचा, सिमरे सुन सातर संयोगा, अलख न लगिए एक खिना, करन करामन गार सुवामी, सगल कटा के अंतर जामी, कर कृपा जिस भगति लावो, जन्म पदार्थ सोजना, जाके मन रूठा प्रव्यापना, पूरे कर्म गुर का जप जपना, सर्व निरंतर सुप्र जाता, बहुत न जोनी परम रोना, गुर का शब्द से मन जाके, दुख दर्द प्रमता का भागे, सुख सहज आनंद नाम रस, आनंद वाणी सहे तुना, सो तनवंता जिन प्रत्याया, सो पतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जाके मन उठा, सो पूर्व कर्मा नाशिरा, जल थल मैयल स्वामी सोई, अवर न कही गए दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काट्यो प्रम सगला, अवर न दिसे एक बिना, ऊचे ते ऊंचा दरबारा, तैन न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर अथा स्वामी, अतुल न जाई क्या बिना, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवर न कोई बिया, आद मध अंत प्रातु है, सगल पसारा तुम तना, जम दूत किस निकट न आवे, साध संग हर कीर्तन गावे, सगल मनोरथता के पूर्ण, जो श्रवणी प्रभ का जस सुना, तू सबना का सब को तेरा, सच्चे साहिब गैर गंभीरा, कौ नानक सेई जन उत्तम, जो पावे स्वामी तुम मना, मारू महला पंजवां, प्रसमरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरबाना, हर दाता जी जंत पेखारी, जन बांछे जा चंगना, मांगो जन तूर परम गद पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो, दीर्घ रोग मिटे हर औखद, हर निर्मल रापे मंगना, श्रावणी सुनो बिमल जा स्वामी, एक का ओट तजो बिख कामी, निव निव पाए लगो दास तेरे, कर सुकृत ना ही संगना, रसना गुण गावे हर तेरे, मिटे कुमाते अवगुण मेरे, सेमर सेमर स्वामी मन जीवे, पांच दूत ताज तंगना, चरण कमल जा बोहत चरिये, संत संग मेरे सागर तरिये, अर्चा बंधन हर संत निवासी, बौड़ जोन ना नंगना, दास दासन को कर लेहो गोपाला, कृपा निधान दीन दयाला, सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न हो भी पंगना, मान तन अर्प तरी अरागे, जन्म जन्म का सोया जागे, जिसका सा सोई प्रतपालक, हत्यागी हो मे हंतना, जल पूर्ण अंतर जामी, खड़का रवे अशल स्वामी।

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा। गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही। आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास वारे। सास ग्रास सुमाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही। आड़ पैर हर रख मन माही, साज संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुगनौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मेरे साधु स्वामी रावणा। सात सिमरत वेद बखाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपे सो ही वड़ भागी, बौड़ ना जो नी पावना। जिसनु बिसरे पुरख बेदाता, जलता फिरे रहे निरताता, अकिरत कणे को रखे ना कोई, नरक कोर में पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ मह रख निवाजया, तेस्यो प्रीत शाट अनराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़कड़ वसे सबन के नेरे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनावना। जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया, नानक दास सदा सरणाई, दूसर रवे ना लावना। आग्या दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही चीने, ताकि कीमत कहण न जाई, जड़कद ओई समावना। तोई भगत सोई वड़दाता, तोई पूर्ण पुरख बेधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दूग सुख लिख पाए, तिल नहीं बदे कटे ना कटाए, सोई हुए जे करते पावे, कह के आव न्यामना। अंध कूबते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गंडे, कृपा तारखे करे अपने, मेरे साधु गोविंद त्यावना। तेरी कीमत कहण न जाई, अचरत रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जामना। मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला पहला, वेण गाहक गुण वेचिए, तौ गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले, तौ गुण लाख विकाए, गुण ते गुण मिल पाईए, जे सतगुर माए सुमाए, मोल अमोल ना पाईए, वणजना लीजे हाट, नानक पूरा तो

जगत ना चुर हीड़े सच चौ नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्सोन हर नाम समाने आपे भगती लाय होन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोने सचे दर जाने आयथे उथे मुक्त है जिन राम पछाने तन तन से जन जिन हर सेवया तिन हो कुरबाने सलोक महला पहला मैल कुचजी मरवड़ी काली मनो कसुद जे गुण होवन ता पिर रवे नानक अवगुण मुंद महला पहला साज सील सत संजमी सा पूरी परवार नानक ऐन सदा भली फिर के गेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निदान पाया कृपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर चिनी चाखिया हंस ठाकर खाया हर पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भुख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशगे तन रावगे तन उर नाम सिगार नानक तन आगे खड़ी थोबावंती नार महला पहला ससरे पई गे कंत की कंत अगम अथाहो नानक तन सुहागणी जो भावे वे प्रवाह पौड़ी तख्त राजा सोभ जे तख्ते लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से ही, ए भूपत राजे न आखिए दूजे पाए दुख होई कीता क्या सालाइए जे जांदे बिलम न होई निचल सच्चा एक है गुरमुख बूझे तो निचल होई सलोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाग नानक से सोहागणी जे सदगुर माए सुमागे महला तीजा मन के अधिक तरंग क्यों दर साहिब छुटिए जे राते सच रंग गूढ़े रंग अपार कह नानक गुर प्रसादी छुटिए जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजे आपे सिट सब साजियन आपे वरतीजे गुरमुख सदा सलाई है सच कीमत कीजे गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हरस पीजे आमन जाना ठाकिया सुख सहज सुवीजे सलोक महला पहला ना मैला ना तुंदला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच महला तीजा सहज वनस्पत फुल फल पर वसे पैखंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जोजन लूजे मने स्यो से सूरे प्रधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पछाना ज्ञानिया का यो महत है मन माये समाना हर जियो का महल पाया सच लाए ते आना जिन गुर प्रसादी मन जीते।

मंगिए सो दर सेवे हो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड़ लहो जे जेवड़ अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने है।

मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी, दूजे पज जावे, आत क्रोध से लूज दे, अगे पिछे दुख पावे, हर जीव अहंकार ना पावई, वेद कूक सुनावे, अहंकार मोए से

जे लोचे सब कोए नानक मन ही कौ मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाई होन विच सगत से वस सगती किने ना पायो फिर जन्म बेनास गुर सेवे सांत पाई है जप सास गिरासा सिमरत सास्त सोध देख

कीमत कहे कौन, तो सृजा सब संसार तू नायक सगल पौन, तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल राउन, तू अपड़ कोई ना सके तू उबनासी जग उदरण, तू थापे चारे जुग तू करता सगल तरण, तुद आमन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण, जिस होवे आप दयाल तिस लाभ है सदगुर चरण, तू होर उपाय ना लभगी अवनासी सिष्ट करण, दखणे मोहल्ला पंजवां जे तू वत्ते अंगणे अब तरत सुहावी होय, एक सकंते भारी मैंडी वात ना पुछे कोए, मोहल्ला पंजवां अबे टोल सुहावणे सो बैठा अंगण मल, पाई ना वञे बिरथड़ा जो कर आवे चल, मोहल्ला पंजवां सेज विशाई कंत कू किया हब सीगार, इती मंझ ना सुमावई जेगल पैरा हार, पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही, तू हुक्मी साजे सृष्ट साज सुमावही, तेरा रूप न जाई लखया क्यों तुझे ते आवही, तू सब मैं वरते आप कुदरत देखावही, तेरी भगत परे पंडार तोट न आवही, एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही, जिस होवे आप दयाल तेस सदगुर सेवा लावही, कदे न आवे तोट जो हर गुण गावही, दखणे मोहल्ला पंजवा जाम पसी हठ मैं पिरी बिहिंजे नाल, हब्बे दुख उलायम।

न जान ही दुर्जन सेती नेहो तू कै गुण हरंग मान ही महला पंजवा नानक जिस दिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस सिंह क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन तन अत गुलाल नानक विण नावे आलू दया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जां तू मेरा मित्र है तां क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुर पौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा।

पंडिया कवन कुमत तो लागे बूढ़ो गे परिवार सगल स्यों आराम ना जपो अपा गे रखाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खाल चंदन जस पार राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा।

सिरानो कहू ना सिमरियो राम, कहे कबीर चेते नहीं मूर्ख मुग्ध गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार, अराग मारू बाणी जय देव जियो की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चंद सत पेदया नाल सत पूरिया, सूर सत खोड़सा दत किया, आ बल बल तोड़िया, आ चल चल थपया, आ कड़ कड़िया तय अप्यो पिया, मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मानिया, अरहाओ अर्ध को अर्धया, सरद को सरदया, सलल को सलल सम्मान आया, बदत जय देव जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिव लीन पाया कबीर, मारू राम सिमर पछताएगा मन, पापी जीरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा, हरहाओ लालच लागे जन्म गवाया, माया परम भुलाहेगा, धान जोबन का गर्भ न कीजै, कद ज्यों गल जाएगा, जौ जम आए केस गए पट गए के।

तत जलाया दीप करह तेलो तन तिर मेलो तन ओ माहे सरसी अवगुण मारी मरे न सीजे गुण मारी ताम।

माई संत संग जागी प्रे रंग देखे जपती नामन धानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अब गुर पायो हुए सहज सुखदायक।

विखे अगर ना जली गए पूजा लीनो दास अपनो ज्योत ज्योति रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली केदारा मोहल्ला पंजवां।

राम बसारे हो गए अभमान, कनक कामनी मां सुंदरी पेख पेख सच मान रखाओ, लालच झूठ विकार महामत,

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जापो जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अदफारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे कारण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरों महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे।

दर कार कभू न जानस, एको दर्श त्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कहे विचारा भैरों महला पहला, सगली रैन सोबत गल फाही, दिन सजंजाल गवाया, खेन पाल कड़ी नहीं प्रो जानिया, जिन एहो जग त्यो पाया, मान रे क्यों छूटस दुख पारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी रगाओ, उन दो कावल मानमुख मत होची, मन अंधे सिर तंदा, काल विकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गर फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, साबद सुरत नहीं पाई, सातर वेद त्रै गुण गए माया, अंधलो तंद कुमाई, खोयो

तारथ सहज ध्यान लिव लाइए, मन रे राम भगत चित लाइए, गुरमुख राम नाम जब हिरदे सह से ती कर जाइए रघाव, परम भेद पौ कभू न छूटस आप जात न जानी, बिन घर नाम को मुक्त न पावस डूब मोए बिन पानी, धंधा करत सगली पद खोबस परम ना मिटस गुवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद बसारा, अकोल निरंजन स्यो।

का आकारा काट वद को करे बिचारा कहत नानक इहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई। भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गृह पंडित पेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया बदमाता रह आ सोए जागत रहे ना मूसे कोए रहाओ तो जागे जिस सतगुरु मिले पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे आप मरे अवरा नहीं मारे सो जागे जो एको जाने प्रकृत छोड़े तत पछाणे चौवरना विच जागे कोए जमे काले ते छूटे सोए।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम नधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकार वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक की सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एक ना ओ मरे न जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे। गुर शब्दी विचारा हर जियो

मेरी माए राम नाम ना छोड़ गुर दिया बुझाए संडा मरका सब जाए पुकारे प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े झुट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा होए रग राया हाथ खड़ग कर ताया अत अंकार हर तेरा कहां तुझ लय उबार खिन में भयान रूप निक्षा थम उपाड़ हरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुर उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे।

को पेख ना बिना नर कही ना लेख बिन विद्या कहां कोई पंडित बिन अमरे कैसे राज मंडित बिन बूझे कहां मन ठहराना ना बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहां बैरागी बिन हो त्याग कहां को त्यागी बिन बस पंच कहां मन चूरे ना बिना साध सड़गी चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे को कैसो ध्यान।

बांदरें रती ना पावे, बिन सदगुर रोग तथे ना जावे। पार ब्रह्म जिस की नींद आया, बां पकड़ रोगों कड़ लया। टूटे बंधन सास संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। भैरों महला पंजवा, कीत आवे ता महा आनंद। कीत आवे ता सब दुख पंज, कीत आवे ता सरदा पूरी। कीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर राम राय।

या की दृष्ट दुख डेरा टहे अमृत नाम शीतल मन गहे अंग भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूर्ण हारी खिन में ऊने सुबर भरया खिन में सूके कीने हरया खिन में निथावे को दीनो थान खिन में निमाने को दीनो मान सब में एक रहया पर पूरा सो जापे जिस सतगुर पूरा।

नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाक मन वसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वे नाओ, भैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन कराम नगार स्वामी।

त्यागी विरला कोए, हर हर नाम जपे जन सोए रहाओ। अंग बुद्ध का छोड़या संग, काम क्रोध का उतरिया रंग। नाम त्याए हर हर हरे, साजना के संग निस्तरे। बैरी मीत होए सम्मान, सर्व में पूर्ण भगवान। प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया। कर कृपा जिस राखे आप, तोई भगत जपे नाम जाप। मन प्रगास गुर ते मत लई, कहो नानकता की पूरी पई। भैरो महला पनवा, सुख नाही बहुते तन खाटे। सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए। सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो। साह संग पाए वड़पागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता, बंधन कर्म तर्म हो करता। बंधन काटनहार मन वसै, तौ सो पावे निज कर बसै। सब जाजक प्रादे मनगार, गुण निदान बेंत अपार। जिसनु कर्म करे प्रव्यापना, हर हर नाम तिने जन जपना। गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास। कहु नानक तुमरी शरणाई, ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई। भैरो महला पंजवां, गुरमुख त्यागो दूजा पाओ। गुरमुख जप्यो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा। जन्म जन्म का सोया जागा, तार कृपा अपनी सेवा लाए। साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ। रोग दोख गुर शब्द निवारे, नाम औषध मन पीतर सारे। गुर पेड़त मन पया आनंद, सर्वन दान नाम भगवंत। जन मरण की मिटी जम त्रास, साध संगत हूंद कवन विगास। गुण गावत निचल विश्राम, पूर्ण होए सगले काम। दुलभ दे आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम। कहो नानक प्रभु कृपा करी, सास ग्रास जपो हर हरी। भैरो महला पनवा, तब ते ऊंचा जा का नाओ। सदा सदा ताके गुण गाओ, जे सिमरत सगला दुख जाए। सर्व सुख बसे मन आए, सिमर मना तू साचा सोए। हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ। पुरख निरंजन सिरजनहार, जी जंत देवे आहार। कोट खते खिन बख्शनहार, भगत पाए सदा निस्तार। साचा तन साची वड्याई,